जी हाँ श्रोताओं, ये जग तपती धूप है, राम का नाम छाया है। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये भक्तिमय रचना।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम आराधना में अब प्रस्तुत है चित्रा सिंह के स्वर में ये भक्तिमय वंदना।

अभी आप ये शब्द सुन रहे थे भाई गुरमीत सिंह के स्वर में। लीजिए अब सुनिए नातिया कलाम, जिसे पढ़ रही हैं बेगम अख्तर।

बेगम अफकर द्वारा पढ़े इस नातिया कलाम के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य स्वर है सुरेश वाटकर का। संगीत संयोजक है सतीश भाटिया।

0: धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के प्रजापति सूक्त का पाठ। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: कार्यक्रम प्रकाश किरण का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, मुख्य स्वर सुरेश वाटकर का था, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है अरहर की उन्नत खेती।
1: खरीफ दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान है। चना के बाद अरहर दूसरी मुख्य दाल वाली फसल है। इसमें लगभग 22% प्रोटीन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अरहर की खेती पर। जलवायु एवं भूमि। अरहर की फसल आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। फसल को प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि के लिए गर्म नम जलवायु और पौधों पर फूल आने से लेकर फली और दाने बनते समय तक शुष्क मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए समुचित जल निकास वाली हल्की से लेकर भारी मिट्टियाँ खेती के लिए उपयुक्त रहती है। भूमि की तैयारी। अरहर फसल के लिए भूमि की तैयारी। मानसून प्रारंभ होते ही एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई और देसी हल से या ट्रैक्टर द्वारा दो बार जुताई करके और पाटा लगाकर समतल करना चाहिए। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिला देना चाहिए। इसके बाद अंतिम जुताई के समय बुआई के पूर्व क्लोरोपाइरीफास 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाना चाहिए, जिससे दीमक जैसे कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। बुआई के पहले जल निकास के लिए खेत में चारों ओर नालियां बना देना चाहिए। उन्नतशील किस्मों का चयन। जमीन के प्रकार, बुआई का समय और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किस्मों का सुझाव विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, जैसे उपास 120। यह किस्म 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उकठा रोग के लिए संवेदनशील, मध्यम ऊंचाई होती है। उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आशा। इस किस्म की अवधि 160 से 180 दिन तक होती है। उकठा और बांझपन के लिए निरोधक किस्म है। खेत के मेड़ों हेतु उपयुक्त है। इसका उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नंबर 148। ये किस्म 160 से 180 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए सहनशील है और बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी उपज क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रगति। यह किस्म 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उकठा रोग के लिए निरोधी और बौनी किस्म है। यह पेड़ी फसल हेतु उपयुक्त है। उपज क्षमता 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लक्ष्मी। यह किस्म 180 से 200 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए निरोधक किस्म है। खेत के मेड़ों में हेतु उपयुक्त किस्म है। उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बुआई का समय। किसान भाइयों, अरहर की बुआई मानसून के ऊपर निर्भर करता है। साधारणतः बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक रहता है। देर होने की स्थिति में इस फसल की बुआई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। बीज की मात्रा। अरहर की बुआई के लिए बीज की मात्रा बीज के आकार और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सामान्यतः मध्यम आकार और उच्च गुणवत्ता वाला बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कतार से बोनी के लिए लगता है। अरहर के साथ साथ सह फसली खेत में अरहर की बीज दर शुद्ध फसल के बराबर रखनी चाहिए। बीजोपचार। किसान भाइयों, बुआई के पूर्व बीज को कवकनाशी दवा बावस्टीन या थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने के बाद राइजोबियम और पीएसबी कल्चर की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित

0: करना चाहिए। बुआई का तरीका, अरहर के बीज कतारों में 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली जातियों को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर बोना चाहिए। मध्यम और देर अवधि वाली किस्मों के लिए कतारों के बीज 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीज 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। बुआई हल के पीछे पंक्तियों में या सीड ड्रिल से करना चाहिए। उर्वरक की मात्रा, किसान भाइयों उर्वरकों की उचित मात्रा का निर्धारण मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना लाभदायक होता है। अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 60 किलोग्राम स्फूर और 20 से 30 किलोग्राम पोटाश बुआई के समय कतारों में डालना चाहिए।
1: अभी आप कार्यक्रम खेती की बात में जानकारी सुन रहे थे अरहर की उन्नत खेती के विषय में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज सुबह 10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। ये प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे और रायपुर से मन की बात का छत्तीसगढ़ी अनुवाद आप सुनेंगे समाप्ति तक। आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन पेश करेंगे सुबह 9 बजे और कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे सामुदायिक गीत का प्रशिक्षण पाठ कन्नड़ भाषा में। गीतकार होंगे जीआरडी गौड़ा। सुबह 8:30 पर किस्सा कहने क्रम में आप सुनेंगे आज कहानी बुढ़िया कर मुर्गा। संकलन और लेखन श्री राम चंद्र सोनी का है। संयोजक नागेंद्र दुबे हैं। कार्यक्रम में प्रतिभागी हैं मृतुल गुप्ता, शोभनाथ साहू, कमलेश सिंह और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शोभनाथ साहू। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। सुगम संगीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:15 पर और लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल आप सुन सकेंगे सुबह 7 बजे। इसमें आप सरगुजिया और सादरी लोकगीत सुनेंगे।

दिन में 12 बजे आप सुनेंगे मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग, आप बन के गीत, ये छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बहनों का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर। कार्यक्रम का नाम है घर आंगन, इसमें आप बातचीत सुनेंगे प्रकृति के बदलाव और से बच्चों को भी समझाएं मौसम परिवर्तन, साथ ही फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुनने का प्रसारण किया जाएगा। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि 9:30 पर। अगर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। हमारी शाम की सभा में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट और युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, समय है शाम 6:05 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: संस्कृत समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ये खेमटा गीत राजू राम और साथियों से।

अभी आप सरगुजिया में ये खेमटा गीत सुन रहे थे राजू राम और साथियों से। कार्यक्रम में लीजिए अब प्रस्तुत है चालेर कर्मा गीत सादरी भाषा में। गायक कलाकार हैं तेलन साय तिग्गा और साथी।

अमरनाथ और साथियों के गए इस देवी भजन के साथ कार्यक्रम गूंजे जंगल अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जुबिन नौटियाल के स्वर में ये पारंपरिक रचना

अभी आप जुबिन नौटियाल के स्वर में ये कबीरदास की रचनाएं सुन रहे थे। कार्यक्रम सुगम संगीत में लीजिए सुनिए रूना लैला के स्वर में ये गीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अब पेश है चंदनदास की आवाज में गजल शेर है शकील बदायूनी। पढ़ पढ़ के वो दम करते हैं कुछ हाथ पर अपने, पढ़ पढ़ के वो दम करते हैं कुछ हाथ पर अपने, हंस हंस के मेरे जख्म ऐसे कर देख रहे हैं।

0: चंदन दास के गाए इस गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक के साथ मैं हूं रैना। और सबसे पहले सूचना जंगली हाथियों के संदर्भ में। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर कोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना आपकी सुरक्षा के लिए है। और इस सूचना के बाद अब बढ़ते हैं अगली सूचना की ओर। रामगढ़ महोत्सव 2026 के संदर्भ में आषाढ़ माह के प्रथम दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले रामगढ़ महोत्सव 2026 की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राम वन गमन पर्यटन परिपथ स्थल और विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ उदयपुर में 29 और 30 जून 2026 को 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के सफल आयोजन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा को नोडल अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सरगुजा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजन की समुचित तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं।

पार्किंग वाहन व्यवस्था, ट्रैफिक रूट चार्ट, कानून ब्लड ग्रुप व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा विभागीय प्रदर्शनी से संबंधित स्टॉल हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपर कलेक्टर सरगुजा और अनुभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर को प्रोटोकॉल, कानून व्यवस्था, मंच पर साज सज्जा, होर्डिंग, मंच के डिजाइनिंग, फ्लेक्स बैनर डेकोरेशन और मंच पर अतिथियों की बैठने की व्यवस्था, नियत स्थल पर मंच और ग्रीन रूम का निर्माण, बैरिकेटिंग, टेंट, कुर्सी आदि की संपूर्ण व्यवस्था हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, कार्यस्थल पर साउंड माइक, LED और जनरेटर की व्यवस्था हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता अंबिकापुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म हमराज का गीत। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत निर्देशन है रवि का।

कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में अब सूचना एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश आवेदन हेतु आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालय मैनपाट जिला सरगुजा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय में कक्षा 11वीं के लिए कुल 24 सीटें रिक्त उपलब्ध हैं, जिनमें गणित और विज्ञान संकाय के लिए 10, वाणिज्य संकाय के लिए 14 सीटें निर्धारित हैं। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 1 जुलाई 2026 से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट से अथवा विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर 20 जुलाई 2026 तक विद्यालय में सीधे जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची 22 जुलाई 2026 को विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 25 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगी और प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। विद्यालय प्रबंधन ने पात्र और इच्छुक विद्यार्थियों से निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म महल का ये गीत। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत बद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। विधानसभा में जिले से संबंधित प्रश्नों के

समयबद्ध और तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध कराने और प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले विधानसभा मानसून सत्र की अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को अत्यंत आवश्यक या अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाना हो या मुख्यालय छोड़ना हो तो इसके लिए सक्षम कार्यालय प्रमुख की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रमुख से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ने या अवकाश पर जाने की अनुमति दी जाएगी। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म साज और आवाज का ये गीत। गीतकार हैं खुमार बाराबंकी और संगीत नौशाद का है।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति और निदेशक विस्तार के निर्देशानुसार और कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख के मार्गदर्शन में किसानों को हरित खाद ग्रीन मैन्योरिंग के उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करना है। कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को हरित खाद के वैज्ञानिक और व्यवहारिक लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि ढैंचा सनई मूंग जैसी दलहनी फसलों को 40 से 45 दिनों की अवस्था में खेत में पलटकर हरित खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि ढैंचा सनई मूंग जैसी दलहनी फसलें राइजोबियम जीवाणुओं की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लगभग 50 से 55 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि में उपलब्ध कराती है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लव इन टोक्यो का गीत। गीतकार हैं हजरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का अंक अब यहीं समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य

0: कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
7: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
8: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM

0: 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है। हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्य

पांच समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी कार्योजेनिक इंजन

0: सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली, पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: weapons should AI remain unregulated, concluding that we can only ignore these warnings at our peril. And finally, arm in arm, Indians in US savor taste of home. Retailers push diaspora demand with WhatsApp alerts and neighborhood vans as mango exports from India seen rising 30% this season, notes the Economic Times. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए लोक श्रृंखला किस्सा कहने के तहत आज इस क्रम में सुनिए शीर्षक बुढ़िया कर मुर्गा शीर्षक पर कहानी। संकलन और लेखन श्री रामचंद्र सोनी का है। प्रतिभागी हैं मृदुल गुप्ता, शोभनाथ साहू और कमलेश सिंह। संयोजक नागेंद्र दुबे हैं। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं शोभनाथ साहू।
3: लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी बुढ़िया कर मुर्गा। संकलन व लेखन रामचंद्र प्रसाद सोनी का है। संयोजक हैं नागेंद्र दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं शोभनाथ साहू।
4: एक निर्धन अनाथ बुढ़िया को एक अंडा मिल जाता है जिसे वो घर ले जाकर टोकरी से ढककर रख देती है। वो अद्भुत अंडा आश्चर्यजनक रूप से बड़ा होते जाता है। एक बार बुढ़िया जब उसे खोलकर देखती है तो अंडा मुर्गे के रूप में तब्दील हो जाए रहता है। वो मुर्गा बुढ़िया से मनुष्य ही की तरह बात करता है, उसके सभी काम करता है। एक दिन बुढ़िया की इच्छा अनुसार उसके लिए बहू लेने चला जाता है और एक राजकुमारी से विवाह कर घर ले आता है। दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। एक दिन राजकुमारी को पता चलता है कि उसका पति साधारण मुर्गा नहीं बल्कि एक सुंदर नौजवान है जो दिन में मुर्गा और रात में मानव बन जाता है। सुबह वो सारी बात बुढ़िया को बता देती है। बुढ़िया के उपाय से मुर्गा मानव बन जाता है, सभी सुख से रहने लगते हैं। यही इस कहानी का सार है।
3: एगो गांव में गरीब बुढ़िया रहत रहीस, उखर कोनो नी रहीस। दिन भर बनी बुथी करे तो सांझुआर रांधे उखाए। बेचारी के जांगर थकत जात रहे। जोन दिन भूदी कैर के लाने तो खाए, नहीं तो इसने खाली पानी पी के सूते रहे। वह रोज सूतत घनी भगवान शिव महादेव और पार्वती ला ध्यान करके कहे कि भगवान मोर एको गोट लैका छुआ रहतीस तो बुढ़ापा के सहारा रहतीस।
4: एक दिन बुढ़िया जंगल ले झूरी बीन के आत रहीस ता खेत के पायर धरी एक गोट अंडा भेटीस। मने मन कहीस,
5: वाह रे बड़ सुघर अंडा भेटिन, आज सांजूर यही लबियारी रैंक के खाहूं।
4: ओला घरे पहुंचते पहुंचत अंधियार हुई किस। बुढ़िया के जांगर तो चलत नहीं रहे। ओकर मन रांधे बर असका साथ रहिस। अब बिहन्ने देखल जाही कही के अंडा लाए वो डूबा में रायक के पथिया में ढाक दहीस और ओढ़ना ओढ़ के चुपे चाप सुत गिस।
5: बिहान दिन घर बहारत घनी बुढ़िया हर पथिया ला उखाड़ के देखिस तो का देखत हवे कि अंडा हर बाढ़ के जबर रोट हो जा रहे। बुढ़िया हर सोच

0: चीज एला फेर ले ढाई के राख दो, कोजिन सांजुआर ले आऊ बाढ़ जाही और ओला ढाई के खुशी खुशी बनी करे चल देहिस।
1: सांजुआर बुढ़िया घरे आईस ता ओखर मन एक धार फेर पथियाला उघार के देखे बर होइस। उघार के देखिस त अंडा हर बाढ़ के और रोट हो जाए रहे। ये देख के बुढ़िया कर जीव ढेरे फुल्ला होइस। बाकी वो अंडा में न जाने का मोहनी रहीस कि बुढ़िया कर जीव होइस एला फेर ले ढाँप के राख दिहल जाए।
0: दूसर दिन बुढ़िया फेर ले बनी भूति करे बर जाए लगीस तब पथिया ला उघार के देखीस तो का देखत हवे कि एगो जबर रोट सुघर कस मुर्गा कोकरों को बासत बरी ही क्लीस। ये देख के बुढ़िया के जीव मारे खुशी के नी मारे लगीस। ओला कोरा में पाए के दुलारे लगीस और मने मन कहीस मोर ते दुनिया में कोई नी हवे, मैं यही ला पाल पोस के अपन मन बहला हुआ बनाहूं।
1: ये सोच के मुर्गा के मूड ला सुहराए लगीस और कहीस,
0: ए बाबू मैं बनी करे बर जात हूँ ना, ते बढ़िया ले घर के तिहा कर भी।
1: और ये कह के जाए लगीस कि पाछू ले आवाज आईस,
2: ए दाई सुन तो कहाँ जात हस।
1: बुढ़िया हर अचकचाए के देखे लगीस कि कौन बोलत हवे।
2: मैं हूँ दाई इते तो आ।
1: बुढ़िया हर पाछू घूम के देखीस कि ओकर मुर्गा हर मइनसे मन कस बोलत हवे। तोहर तो चकराए गिस।
2: सुन आज ले तैं कहों नी जाबे, तोर बदला में भूति करे बर मैं जाहूं।
1: मुर्गा के एकस मीठ गोट सुन के बुढ़िया कर मन माया ले भैर गिस। कहिस
0: तैं मुर्गा जात रे बेटा, बनी भूति करे बर कैसे जाबे, कोनो मार मुरी के खाए देही तो मैं का कर ले हूं बता तो।
2: तैं फिकिर झीन कर दाई, मोला काही नहीं होए। तैं घर दूरा कोठी भाड़ी मनला बहार माँज ली पोत के राखे रहबे, मैं सांजुआ रहूं।
1: और यही कह के मुर्गा हर बनी करे बर चल दिहिस। चलत चलत एगोट खेते पहुँचिस जे जी ढेरे बनिहार मन धान लुवत रहिन। खेत कर गोसैया ओमन कर धीरे धीरे काम कराई देख के फिकराए रहे और उमन उपरी जंगात रहे। मुर्गा उकर नगी जाए के कहिस,
2: मोहुला बनिहार राग बेका गिरहत।
0: खेत गुसैया इसनीर खिजिया आए रहे कहिस,
1: ताय मुर्गा जात धान लुए बर सकबे।
2: ताय लुआए के तो देख गिरहत।
0: और सच्चो उमन 20 जने बुधिहार मिल के एक छिनाला काटे बर नी सकत रहे, तब ले हर चार छिनाला टुंडराए रखे। खेत गोसैया हर ये देख के मने मन कहिस,
1: बड़ सुघर बनिहार भेटन जी। ने मुर्गा ते ये बता कि तय बनी कितना लेबे।
2: कहीं नहीं, बस सांजुआर छुट्टी घरी मोर दोनों कान में धान ला भरवाए देबे।
1: ठीके हवे।
0: और बड़ सस्ता बनिहार भेटन कई के ओला काम पर रख लेहिस। सांजुर जब सब बनिहार धान लुई के चल देहिन तब मुर्गा घलो अपन भूति मांगिस और मुँह ला घुमाए के कहिस,
2: ले मोर कान में धान ला भरवाए दे।
0: खेत गोसैया अंजुरी ले धान भरे लागिस तो मुर्गा हर कहिस,
2: का अंजुरी ले धीरे धीरे भरत हवा, सुपा ले भर नहीं।
0: अब ये कह के अपन कान में सुपेच सुपा धान भरवाए लागिस।
2: ले अब एगो पैरा कर ठेठी बनाए के लगाए दे।
1: एगो कान हर भर गिस तो दूसर कान ला भरवाए लागिस और पैरा का ठेठी लगवाए के ओहर घरे पहुंचिस। तो कहिस,
2: ए दाई दूरा ला उघार।
1: बुढ़िया केवाड़ी खोलिस तब मुर्गा हर फेर कहिस,
2: मैं कहे रहे ता तय घर मनला बहार लीप के राखे हवस कि नहीं।
1: बुढ़िया मने मन कहिस,
0: ए हर धान के कहा जग राखिस हवे, नी दिसता है।
2: मोर कान कर ठेठी ला हिकाल तो दाई।
1: ए कह के अपन मुड़ी ला घुमाए दहिस। बुढ़िया हर ओकर कान का ठेठी ला हिकालीस ता ओकर घर दूरा अंगना कोठी भाड़ी सब धान ले भर गिस।
2: ले दई अब एहू कान के ठेठी ला हिकाल दे।
1: अब तो बुढ़िया कर घर में धान रखे बर जगह नहीं रहे। धान मल्ला सहित लहीस ता मुर्गा हर कहिस,
2: लान दई अब कहीं रांधे होबे तो मुँह लखाए बर दे।
1: बुढ़िया कर घरे कहीं रहे कि रांधे लजाए के कहिस,
0: रह बेटा चटिकस धान ला बेच के

0: दाल नून तेल ले आओ तो तोर बर सुघर बियारी रांधू।
1: आज पर रहे दे दई, काल ले दाल तेल नून घलू भूति कर के लानू।
0: एक दिन बुढ़िया हर बैठे बैठे अपन लुगा मन में चेथरा साटत रहीस। ये देख के मुर्गा हर सोचीस,
1: मोर दाई कितना स्वाभिमानी हवे, चाहतीस तो मोला कही के एक ले बैठ के एक लुगा कपड़ा मंगवाए सकत रहीस।
0: ओहर नगी जाए के कहीस।
1: का करत हस दाई?
2: बुढ़िया हर लजाए के कहीस।
0: काही नहीं बेटा, एदे अपन लुगा छिद्रा मन ला चटिक सहारत रहें।
1: मैं सब जानत हूँ दाई, रुक जा, काल ले तोर बर नवा लुगा घलो ले आनहूँ।
2: आने दिन मुर्गा हर ओकर घरे नावा नावा लुग्गा कपड़ा मन के खरही गाय तेहिस। एक दिन कर दिन में बुढ़िया हर कहिस,
0: ए बेटा, हमर घरे नून तेल कपड़ा लत्ता जम्मो जात हो गईस, बस एक के जात के कमी हवे।
1: का जायत कर कमी दाई?
0: ए घर ला संभारे जोगाए वाला के बेटा, ते मोर बर एगो सुघर कस बहुरिया घलो लाइन देते तो का नहीं।
1: बस एतरेज गोइठ हवे दाई, तैं फिकिर झिन कर दाई। मैं तोर बर अजे बहुरिया खोजे बर जात हूँ।
2: और ये कह के मुर्गा हर अपन दाई बर बहुरिया लाने चल दिस। चलते चलत एगो राजा कर राज में पहुंचिस। वो राज के राजा कर बेटी जब बर सुघर और भक्तिन रहिस। ओहर रोज तलवा में नहाए के भगवान महादेव ला जल चढ़ाए। एक दिन ओहर अपन सखी मन संग तलवा में नहात रहिस। मुर्गा हर ओला देखिस तब मने मन कहिस,
1: एहर मोर दाई बर बहुरिया ठीक रही।
2: औ कलेस तलवा में ढुईक के राजा कर बेटी कर गोड़ ला धैर लिहिस और कहिस,
1: मैं तोर संग बिहा करे चाहत हूँ। जब ले तैं हव नी कहबे तोर गोड़ ला नहीं छोड़ो।
0: कोजिन कहा जात हवे सोच के राजकुमारी के जम्मो सखी मन भाग पराइन। अब राजा जग जाए के जम्मो गोठ ला कही सुनाई। राजा हर अपन 8-10 गो सिपाही मन ला ले के तलवा धरी पहुंचीस और कहीस,
2: तय मानुख देवता भूत परे जो हवस तेला कर, और का लेबे तेहुला हम बता।
1: मैं कौन हूँ तेला छोड़, मैं तोर बेटी संग बिहा करे बर चाहत हूँ। जब ले तय मोर संग एकर बिहा करके बचन नी देबे तब लेला नी छोड़ो।
0: राजा बिचरंगा कहा करतीस, बेटी के जान बचाए बर बचन दे दहीस। तेकर बाद मुर्गा राजा के बेटी ला धैर के बहरे हिंकलीस। राजा सोचीस,
2: मोर बेटी के दुल्हा एकुट मुर्गा बनी।
0: अपन देहल बचन ला सोच के राजा ला गस्ती मारे लागिस। ता राजकुमारी हर कहिस, जाय दे दाऊ, भगवान हर मोर कर्म में यही ला लीक देहिस हवे, तेला का करबे, मोर बिहा एकर संग कर दे।
2: बड़े धूमधाम ले राजा हर ओमन कर बिहाव ला कर देहिस। मुर्गा अपन दुल्ही ला लेके गाजा बाजा संग घरे चल परिस। डोली जब गांवे पहुंचीस तो चारों कती हाहाकार मच गीस। बुढ़िया के मुर्गा बेटा राजा कर बेटी ला बिहाय के लानत हवे। ये गोठ जब बुढ़िया हर सुनीस तो अपन बेटा बहुरिया ला परिछे बर समान सजोरे लागिस।
0: एतिक सुघर बहुरिया ढुकाए के बुढ़िया जबर फुला होत रहे। बुढ़िया के बेटा बहुरिया एगो कोठरी में रहे लागिन। राजा के बेटी घलो मन लगा के घर परिवार के सेवा करे लागिस।
1: अब का होए कि रोज राती जब राजा के बेटी सुईत भुलाए तेघिन ओ मुर्गा अपन खोचली ले बहरी हिकेल के सुघर नौजवान बन जाए, और रात भर अपन दुल्हिन जग बैठ के भिनसरे फिर अपन खोचली में ढुईक के वही कस मुर्गा बन जाए।
2: एक दिन कर बात है, राजकुमारी ला जब बर रात ले नींद नी परत रहे। राजा के बेटी यही कस आखिला मुइंद के मने मन कुछ सोचत रहे। एक धार अनचखा आँख खोल के देखीस तो अचरज में पड़ गीस।
0: ये मुर्दाई मोर दूल्हा मुर्गा के भेष में एतेक सुखर नौजवान हवे,
2: और झट ले आँखी मूंद लेहिस और सुते कर बहाना कर के ओकर जम्मो हरकत ला देखे लागिस। भिनसहरा होते ओ नौजवान फिर ले

0: अपन खोचली में ढुक के मुर्गा होई गिस।
1: बने तो ये बात हवे।
0: ऐसने सोच के राजा कर बेटी बिहंचे सब गोटला बुढ़िया ठन कही सुनाइस। बुढ़िया हर एगो उपाय सोचिस और राजा कर बेटी ला कहिस।
1: यदि आपकी राती ओहर हिंकल ही ना तो ताए मोला कैसनो कैर के इशारा कर देबे।
0: रात के बुढ़िया अपन गोरसी में आगी धधकाए राखे रहिस। मझिन राती जब वो नौजवान अपन खोचली ले हिकलिस त राजा कर बेटी हर चूरी बजाए के बुढ़िया ला इशारा कर देहिस। बुढ़िया हर उठिस और ओकर खोचली ला उठाए के आगी है ढोए देहिस।
1: भिनसारे ओ नौजवान फिर ले ढूंगे भर हकबकाए के अपन खोजली ला खोजे लागिस। तेही घनी बुढ़िया और राजा के बेटी आए के टप ले उकर गोल ला धर लेही।
2: मोला मोला छोड़ देवा मोला मोला जाए बर हवे।
1: आप तोला नी जान देन।
0: ऐसन कह के दोनों और जोर ले ओकर गोड़ ला धर लेहिन।
1: ओमन के जीत के आगू नौजवान हार मान गईस और कहीस,
2: मैं एगो शराब कर चलते मुर्गा बन गए रहें, बाकी तोमन के भक्ति और महादेव के कृपा ले मैं फेर ले मइनसे बन गए।
0: ओ दिन ले ओमन कर भाग फिर गईस। जम्मो झन सुख ले रहे लाकिन। बुढ़िया के भाग जागिस, मुर्गा गईस मइनसे बने। कायल ले फिर आने सुनिया, आज कर कहनी बस इतने।
1: बुढ़िया कर मुर्गा लोक कथा श्रृंखला के सकहनी में अभी आपने सुनी ये कहानी। संकलन व लेखन रामचंद्र प्रसाद सोनी का था। वाचन स्वर थे शोभनाथ साहू, कमलेश सिंह और मृदुल गुप्त के। संयोजक थे नागेंद्र दुबे और प्रस्तुति थी शोभनाथ साहू की। लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी की अगली कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे एक और सरगुजिया कहानी। आज यहीं तक, नमस्कार।
3: लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी के तहत अभी आप सुन रहे थे कहानी। शीर्षक था बुढ़िया कर मुर्गा। संकलन और लेखन श्री राम चंद्र प्रसाद सोनी का था। प्रतिभागी थे मृदुल गुप्ता, शोभनाथ साहू, कमलेश सिंह। संयोजक थे नागेंद्र दुबे और प्रस्तुतकर्ता थे शोभनाथ साहू। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गीत का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार हैं GDR गौड़ा।
4: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
5: हाँ, आ गए हैं।
4: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
5: मारुति संगीत पाठशाला।
4: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
5: हाँ।
4: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
5: हाँ, सिखाएंगे।
4: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
5: दोड्ड रंगे गौड़ा।
4: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
5: हाँ, तैयार है।
4: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
5: कडल हक्की गलू।
4: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
5: हाँ।
4: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
5: हाँ, हाँ।
4: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
5: हाँ।
4: रख लिया है?
5: हाँ।
4: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
5: हाँ।
4: सब लिख लीजिए।
5: हाडू तिहवो हारू तिहवो हारू तिहवो
4: कडल करे खग कुला
5: कडल करे खग कुला
4: यनी तो मुगिला
5: यनी तो मुगिला
4: उद्द अगला
5: उद्द अगला जी की दानी तू
4: बांदड़ा
5: बांदड़ा।
4: अच्छा, तो एक पहला स्टंजा है।
5: हाँ?
4: आगे का स्टंजा है बान लोक नगुआ नाका
5: बान लोक नगुआ नाका
4: हारो हक्की पालीगे
5: हारो हक्की पालीगे
4: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
5: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
4: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
5: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।

0: हाँ सब लोग लिख लिया।
1: हाँ
0: अच्छा तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी,
1: दूर दूर हारी हारी,
0: व्योम कानुवा बगे,
1: व्योम कानुवा बगे, हसीव मरेसी,
0: वांछे मेरेसी,
1: वांछे मेरेसी,
0: दिगंत सेरो लघु बगे,
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: हाँ तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा, हाँ। वो भी सुना दो,
2: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
2: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो,
1: याव नाडो यंथ काडो,
0: हारो आसे हक्कीगे,
1: हारो आसे हक्कीगे,
0: मुक्त गगन नूरु काल,
1: मुक्त गगन नूरु काल,
0: ईजो शक्ति रेक्केगे,
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
2: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
2: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
2: हाँ।
0: इसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
2: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता ताकी ता ताकी।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं?

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहले अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गीत का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार थे GDR गौड़ा। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं जिंदगी हर सुबह हमारे दरवाजे पर उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती है। बस जरूरत है कि उस किरण को पहचानने की, उसे महसूस करने की और अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजा लेने की। तो मुस्कुरा दीजिए। खुशियों और सुरों से सजा बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन लेकर हाजिर हैं हम। सुनिए कार्यक्रम अपने रेडियो हम सफर रहना के साथ। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में साझा करेंगे हमारी रोज़मर्रा के ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसी बातें जो होती हैं बहुत ख़ास। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के अनूठे पहल से जुड़ी बातें करेंगे। साथ ही याद करेंगे आज संगीतकार विशाल ददलानी, फिल्मकार राज कंवर को उनके जन्मदिन पर। तो लीजिए, अब पेश है मुस्कुराता हुआ ये तराना।

जी हाँ श्रोताओं, ज़िंदगी हंसती मुस्कुराती हो तो हमें बहुत सुकून देती है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि हम हर दिन एक नए सवेरे के साथ उठते हैं, जो हमें नई उम्मीद और मुस्कुराने की एक नई वजह देती है। दुख और परेशानियाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, वही सच में जीना सीख जाता है। अपने चेहरे की मुस्कान से ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन किया जा सकता है। हमारा जीवन प्रकृति का दिया अमूल्य उपहार है, और प्रकृति हमें सिर्फ जीवन ही नहीं देती बल्कि संतुलन, संरक्षण और स्वच्छता का संदेश भी देती है। जब हम अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करते हैं। आज जब हम विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहा है शहरीकरण और औद्योगिकरण, जिसके कारण बढ़ रहा है अपशिष्ट पदार्थों का ढेर यानी कचरा। आज कचरा प्रबंधन एक बड़ी वैश्विक और स्थानीय चुनौती बन गया है। आज समय की सबसे बड़ी मांग यही है कि हम कचरे को समस्या नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखना सीखें। इसी सोच को साकार कर रहा है अंबिकापुर नगर निगम का एक अनूठा और प्रेरणादायक प्रयास, गार्बेज कैफे, जहां प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराया जाता है और स्वच्छता जन को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। ये पहल न केवल

पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी याद दिलाती है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। और इस कार्यक्रम में हम जानेंगे इस अनूठी पहल की पूरी कहानी, और इस जानकारी को साझा कर रहे हैं अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित गार्बेज कैफे के प्रभारी श्री रितेश सैनी। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कुछ ही पलों में।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है, इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपये से लेकर 60-70 रुपये किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी

क्वालिटी प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथककरण का खर्चा बचा, जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक को एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट

0: अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक अलार्म सेंटर है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियाँ टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: यस।
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारीगण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचड़े को अन्य सभी कचड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बात आई कि क्या इस कचड़े के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारीगण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सके।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें। तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहा है, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ कोई भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो एक मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहाँ प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सैनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर

0: महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
1: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 से 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
0: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
1: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज़ करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज़ किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
0: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
1: नहीं,
0: क्या है,
1: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
0: जैविक है,
1: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
0: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
1: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
0: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
1: जी,
0: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
1: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
0: असर
1: कैफे
0: पड़ा,
1: बिल्कुल असर
0: वृद्धि
1: पड़ा,
0: हुई है
1: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर से अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
0: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
1: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है कि रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
0: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब
1: इसका
0: में?
1: जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लो कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि

0: 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा। लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा। तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का, अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है। मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है, नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा 21
1: लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बोतल में पानी पिए और वो बोतल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजंस के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव,
1: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें, ये
0: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं डालते जाएं वो एक भर कितना कंप्रेस हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी कुछ।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: को इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया, यहाँ
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी।
0: अंबिकापुर के ट्वीट को को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पे ले रहे हैं। और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई

0: गार्बेज कैफे की। तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कार्यक्रम के अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। और अब पेश है बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन का शेष भाग।

श्रोताओं, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में हमने अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित गार्बेज कैफे की अनूठी पहल पर बातें सुनी। स्वच्छता की ओर कदम सराहनीय है, प्रेरणादायक है और वाकई में ऐसे प्रयास पर्यावरण संरक्षण और मानवीय सुख का आधार बनते हैं। जब हम मिलजुल कर प्रयास करते हैं तो वो सफल और सार्थक होते हैं। परस्पर सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व का एक ऐसा ही अनूठा दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, जो कहीं नहीं मिलता। हजारों महिलाएं अपनी अपनी दुकानों पर बैठी हैं, ना कोई पुरुष मालिक, ना मैनेजर, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये है इमा कैथल, दुनिया का सबसे बड़ा और पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित मार्केट। कहते हैं जब मैतेई पुरुष खेती और युद्ध में संलग्न रहते थे, तब महिलाओं ने व्यापार और बाजार व्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में ले ली। धीरे धीरे ये स्थान मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहा, बल्कि पारस्परिक सहयोग, दैनिक चुनौतियों को साझा करने और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से विकसित होकर सामूहिक एकता का केंद्र बन गया। इस अनूठे स्थान की और बातें आपसे साझा करेंगे। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओं, हम बातें कर रहे थे मणिपुर की राजधानी इम्फाल की। यहाँ पर है एक अनूठी व्यवस्था जिसका नाम है एमा कैथल। दुनिया का सबसे बड़ा और पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित बाजार व्यवस्था। श्रोताओं, आपको बता दें कि यहाँ पर यदि किसी माँ की तबीयत खराब हो जाए तो पड़ोसी दुकानदार उसका सामान बेच देती हैं। किसी की बेटी का विवाह हो तो पूरा बाजार मिलकर आर्थिक सहयोग करता है। यहाँ प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्व सहभागिता का है। अध्ययन बताते हैं कि दीर्घायु और गहन सुख का सबसे बड़ा आधार मानवीय संबंध है। एमा कैथल की माताएं बहनें शायद इन शोधों से परिचित ना हों, पर सदियों से वे इस सत्य को जी रही हैं। यहाँ सामाजिक संबंध केवल भावनाएं नहीं बल्कि जीवन की व्यवस्था है। हम आप भी अपने किसी पड़ोसी या सहकर्मी का एक छोटा सा काम बिना कहे कर दें, संभव है उस क्षण हम पाएं कि खुशियां बांटने से घटती नहीं बल्कि दोनों ओर बढ़ती हैं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। श्रोताओं, चलिए अब बात करते हैं फिल्म संगीत जगत के दमदार आवाज़ ओजवान गायक और शानदार संगीतकार को आज उनका जन्मदिन है। हम बातें कर रहे हैं संगीतकार विशाल ददलानी की, जो संगीतकार शेखर अविजयानी के साथ मिलकर विशाल शेखर की संगीतकार जोड़ी के रूप में अनगिनत सुपरहिट गीत दे चुके हैं। विशाल ददलानी को उनके जन्मदिन के शुभकामनाओं के साथ सुनते हैं उनका संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बातें करेंगे प्रख्यात फिल्म निर्देशक राज कंवर की, जिन्होंने प्रेम संगीत और भावनाओं से सजी कई यादगार फिल्मों को बड़े पर्दे पर उतारा। 28 जून 1961 को जन्मे फिल्म निर्देशक राज कंवर ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली रंगमंच से की। बाद में वो मुंबई आए और प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ सहायक के रूप में काम किया और उसके बाद निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। साल 1992 में आई फिल्म दीवाना उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी, जिसने जबरदस्त सफलता हासिल की और इसी फिल्म से अभिनेता शाहरुख खान ने फिल्मों में अपना शानदार आगाज किया। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुंजन में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो इस प्रकार हैं: लहू के दो रंग, लावा, दुल्हन वही जो, पिया मन भाए, ओम शांति ओम, दीवाना। गायक कलाकार थे

किशोर कुमार, लता मंगेशकर, यशोदास, हेमलता, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, विनोद राठौर। और इसी के साथ कार्यक्रम गुंजन अब रैना को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। अभियान के तहत 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी आर भगत ने बताया कि आज जो बच्चे पोलियो की खुराक नहीं ले पाएंगे उन बच्चों को अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 जून को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए 6वें और 7वें वेतन आयोग से जुड़े 59 महीने के बकाया एरियर के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि 2 राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति का अभाव पेंशनरों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिनों के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल 29 जून से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्मश्री डॉ. बुद्री ताती ने कल रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज को उत्थान, लोक संस्कृति के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डॉक्टर ताती के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा के छोटे से गांव से निकलकर डॉक्टर ताती ने 4 दशक से अधिक समय तक बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सरगुजा जिले के रामगढ़ में कल 29 जून से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन 29 जून को छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है।

0: वहीं आगामी 7 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी से कथित 250 टन लोहा चोरी के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर 1 जुलाई को न्याय की मशाल यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में 2 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, आइए जानते हैं तापमान सूचना। स्थानीय मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और तापमान सूचना के बाद आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों के तराने, कार्यक्रम नए तराने में। सुबह 10:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। ये प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और इसके बाद आप सुनेंगे रायपुर से मन की बात का सरगुजिया छत्तीसगढ़ी अनुवाद। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग आप मन के गीत। ये छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन में 12:30 पर। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बहनों का कार्यक्रम घर आंगन आप सुन सकेंगे दिन में 1:10 पर। इसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा प्रकृति के बदलाव से बच्चों को भी समझाएं मौसम परिवर्तन। साथ ही फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने का प्रसारण किया जाएगा। ईमेल फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि 9:30 पर। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा पेश करेंगे दिन में 2:30 पर। हमारी शाम की सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे हाथियों की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे। भजन संध्या कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:05 से। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी पेश करेंगे शाम 5:30 पर। इसमें आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर, साथ ही क्रम युवा पसंद आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण शाम 6:05 पर किया जाएगा। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर। इसमें आज आप सादरी लोकगीत सुनेंगे। कलाकार होंगे घसिया लकड़ा और साथी और रामेश्वर लकड़ा और साथी। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे।

ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल, इसमें आप बातचीत सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण, हम सबका दायित्व, स्वच्छता से ही स्वास्थ्य, इस विषय पर चर्चा। साथ ही आप जानेंगे किसान समाचार, लोकगीत सुनेंगे और मंडी भाव, मौसम कर जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श भी जानेंगे। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम मन की बात का सरगुजिया अनुवाद आप सुन सकेंगे। अनुवादक हैं शिवानी गुप्ता, वाचन और संपादन देवेंद्र दास सोनवानी का है। सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मिथुन और तुलसी कुमार की आवाजों में फिल्म ऑल इज वेल का गीत। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत मिथुन का है।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों के तराने कार्यक्रम नए तराने में। लीजिए सुनिए सपना पाठक और प्रकाश प्रभाकर की आवाजों में फिल्म अखंडा का गीत। गीतकार हैं किशन पालीवाल और संगीत थामन एस का है।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी, मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती, रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा, और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918। कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना? gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: कार्यक्रम नए तराने में अब पेश है शैल हदा की आवाज में फिल्म सरबजीत का गीत। शब्द रचना है A.M. तुरास का, संगीतबद्ध किया है शैलेश प्रीतेश ने।

0: एम तराज और संगीत शैल प्रदेश का था। कार्यक्रम जारी रहेगा इस संदेश के बाद।
1: हेल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423060। नंबर एक बार फिर 0777423060।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों के तराने नए तरानों में। तो लीजिए अब पेश है फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का गीत। आवाज़ें हैं विशाल ददलानी, शालमली खोलगड़े और अनुष्का मंजंदा की। शब्द रचना है कुमार का और संगीत सचिन जिगर ने दिया है।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सबे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। लीजिए अब सुनिए सुखविंदर सिंह और दिव्या कुमार की आवाज़ों में फिल्म जीरो का गीत। गीत इरशाद कामिल ने लिखे हैं, संगीत है अजय अतुल का।

कार्यक्रम में अब अगली पेशकश है फिल्म सूर्यवंशी 2 का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और तनिष्क बागची, संगीत विजो शाह का है।

कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए MM करीम और केके की आवाजों में फिल्म स्पेशल 26 का गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत MM करीम का है।

कार्यक्रम नयनतारा में लीजिए अब पेश है श्रेया घोषाल की आवाज़ में पुष्पा टू द रूल का गीत। गीतकार हैं रकीब आलम और संगीत देवी श्री प्रसाद का है।

कार्यक्रम नैताराणी के आखिर में लीजिए सुनिए राकेश पंडित की आवाज़ में प्यार के साइड इफेक्ट्स का गीत। गीत को लिखा है मयूर पुरी ने, संगीत प्रीतम का है।

राकेश पंडित के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.9 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से करेंगे, प्रतीक्षा करें।

0: राजनीतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जनभागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवार

परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय
बहुत

बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले

सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है।

आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर

वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास

जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है? ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना

0: और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। दिन के 11:32 हुए हैं। प्रस्तुत है मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
3: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप सबो मन ले जुरिया के मुला अब्बड़ आनंद होवत हे। 2026 के आधा बछर पहावत हे। ये 6 महीना मा हमन मन की बात मा देशवासी मन के अनेक उपलब्धि मन के चर्चा करे हन। जून मा घलो देश हा कुछ ऐसने उपलब्धि प्राप्त करे हे जेन हर देशवासी ल गर्व ले भर देथे। ये सफलता मन देश के सुरक्षा और आत्मनिर्भरता ले जुड़े हैं। हालिच मा मुला कोलकाता मा नौसेना ले जुड़े एक ठन कार्यक्रम मा सम्मिलित होए के मौका मिलेस। वहाँ INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय ल भारतीय नौसेना के बेड़ा मा सम्मिलित करे गईस। ये जहाज मन के डिजाइन और उत्पादन तको सबो कुछ स्वदेशी है। संगवारी हो, जूनेज के महीना मा विमानन क्षेत्र मा घलो देश एक बड़का सफलता पाइस। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान हा अपन पहली उड़ान पूरा करे है और इसने 40 विमान भारत में बनाए जात हैं। एखर ले MSME और अंतरिक्ष क्षेत्र ला नवा ताकत मिलत है, रोजगार के अवसर बढ़त है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प घलो मजबूत होवत है। इही महीना DRDO स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के घलो सफल परीक्षण करे है। इला DRDO के प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग हिस्सेदार मन मिल के बनाए हैं। माने आज समुद्र ले लेके आगाज तक हमार भारत ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत है। संगवारी हो, जून मा एक ठन और आयोजन होइस जेमे जम्मो दुनिया भारत के प्रयास ले जुड़ीस और ये कार्यक्रम रहीस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये पैत दुनिया के 2500 ले ज्यादा ठियामा योग के अनेक विविध कार्यक्रम होइस। हमार देश मा करोड़ों लोगन मन ठिया ठियामा योग कार्यक्रम मन मा हिस्सा लेन। ये महीना अहमदाबाद मा आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप के घलो बड़ चर्चा होइस। एमे भारत हा कुल 114 पदक जीते हे। एमाले 102 स्वर्ण पदक घलो सम्मिलित।

दलित है। भारत ये प्रतियोगिता के पदक तालिका मा पहली स्थान मा रहिस। मैं सबो विजेता खिलाड़ी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, कोनो भी राष्ट्र के आत्मा ओखर मनखे मन होते और जब वो देश के लोगन मन कोनो संकल्प लेते तक कोनो भी शक्ति वो मन ला अपन लक्ष्य ले नहीं डिगा पाए। राष्ट्र निर्माण मा जनभागीदारी के ये ताकत भारत के बहुते बड़का पूंजी है और ये जनभागीदारी के हम बार बार अनुभव करत हन। संगवारी हो, पश्चिम एशिया में बने युद्ध के स्थिति ला देखत मैं देशवासी मन ले कुछ आग्रह करे रहे हूँ। मैं कहे रहे हूँ कि जहाँ तक संभव हो कुछ बखत खातिर गोल्ड सोना बिसाए ले बाँचें। लोगन मन ले कहे रहे हूँ कि विदेश में छुट्टी मनाए ले बाँचें। मैं लोगन मन ले कार के सामूहिक उपयोग ला घलो बढ़ावा दे के अपील करे रहे हूँ। मैं किसान मन ले रसायन मुक्त खेती बर खेत बचाए खातिर और प्राकृतिक खाद के ज्यादा ले ज्यादा उपयोग के आग्रह करे रहे हूँ। संगवारी हो, मैं देश के हर नागरिक के आभारी हूँ कि मोर अपील के वो मन न सिर्फ समर्थन करिन भलुक हर कोती ले ओ में अपन सहयोग करत हैं। मुला कईयों परिवार मन संदेशा भेज के अपन अनुभव साझा करे हैं। कतकोन परिवार मन ये तय करे हैं कि घर के बिहाव मा ये पैत सोना नहीं बिसाही, जरूरत पड़ी तब पुराना सोना ला रिसाइकिल करके नवा गहना बनवा लेही। कतकोन लोगन मन सोशल मीडिया में ये घलो लिखे हैं कि कैसे वो मन ये पैत विदेश यात्रा ला टाल दे हैं। संगवारी हो, कार के सामूहिक उपयोग ला लेके घलो लोगन मन अनेक अनुभव साझा करे हैं। जिन लोगन मन हर दिन एके दिशा मा अपन अपन वाहन ले जाते हैं, वो मन अब एक साथ जाए लगे हैं। लोगन मन हर संभव बस और मेट्रो के उपयोग करत हैं। एखर ले पेट्रोल और डीजल के बचत होवत है। यही रकम देश के आने आने हिस्सा मा प्राकृतिक खाद के खपत बढ़े के घलो खबर आवत है। संगवारी हो, मोला ये बात के खुशी है, ये वैश्विक आपदा के हम भारतीय मिल के मुकाबला करत हन। मोला विश्वास है जनभागीदारी के ये शक्ति हमन ला मजबूती देही, हमन ला सफल बनाही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हमार देश मा जन्मदिन बर बिहाव पारिवारिक कार्यक्रम होए के संगे संग जम्मो समाज के उत्सव घलो होते। हर परिवार चाहते कि ओखर खुशी मन आने मन संग घलो साझा होवे। लोगन मन पहुना मन ला उपहार घलो देते। संगवारी हो, महाराष्ट्र के नांदेड़ मा एक परिवार ह अपन खुशी बांटे बर ऐसन काम करीस जेन चर्चा के विषय बन गए है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव मा पेठ कर परिवार रही थे। ये परिवार ह सोचिस कि अगर खुशी बांटना है तो ऐसन जिनिस दिए जाए जिन मुश्किल बखत मा कोनो परिवार के सहारा बने। अपन घर मा बिहाव के मौका मा ये परिवार ह गांव के लगभग 3,500 लोगन मन बर दुर्घटना बीमा के व्यवस्था करिस। हर मनखे ला 1,00,000 रुपया के बीमा कवर दिए गईस। ये पहल के पाछू के भावना बहुते स्पर्श करने वाला है। परिवार ह देखे रहीस कि दुर्घटना के बाद परिवार मन ला आर्थिक कठिनाई के सामना करना पड़ते। ऐसे बखत मा एक ठन नानुक सहायता घलो बहुते बड़का संबल बन जाते। संगवारी हो, सरकार देश के करोड़ों परिवार तक सुरक्षा के कवच पहुंचावत है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत खाली 20 रुपया के सालाना प्रीमियम, माने खाली एक बछर के 20 रुपया के प्रीमियम, ओखर ऊपर 2,00,000 रुपया तक के दुर्घटना बीमा मिलते। अब तक ये योजना ले 58 करोड़ ले ज़्यादा लोगन मन जुड़ चुके हैं। एमा करीबन 28 करोड़ हमार दाई बहनी बेटी मन हैं, माई लोगिन मन हैं।
ये योजना ले पीड़ित परिवार ल

अब तक जेन हिसाब मिले हे 3,700 करोड़ रुपया ले ज्यादा के सहायता मिल चुके हे। संगवारी हो, इही रकम ले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना घलो ओतकेच महत्तम के हे। ये योजना मनखे के दुखद मौत होए मा ओखर परिवार ल 2,00,000 रुपया के बीमा कवर देथे। एखर सालाना प्रीमियम खाली 436 रुपया है, माने एक दिन के बड़ मुश्किल 1.5 रुपया। ये योजना ले अब तक 27 करोड़ ले ज़्यादा मनखे मन जुड़े हैं। एखर अंतर्गत देश के करीबन 11,00,000 परिवार ल करीबन 22,000 करोड़ रुपया के सहायता मिल चुके हैं। ये आंकड़ा बहुते बड़ा है। ये आंकड़ा मन के पीछे लाखों परिवार मन के अपन अपन कहानी है। कहूँ कोनो दाई ल लइका मन के पढ़ाई चालू रखे मा सहायता मिलीस, कहूँ कोनो पत्नी ल घर के जिम्मेवारी संभाले मा सहारा मिलीस। संगवारी हो, कईयो घाव बहुते बड़का सुरक्षा के शुरुआत बहुते छोटे राशि और एक नानुक कदम ले हो सकत है। नानकुन निर्णय घलो बहुते बड़का बदलाव करते। मोर आप जम्मो मन ले आग्रह है कि अपन परिवार मा ये योजना मन के जानकारी खचित साझा करो। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, मन की बात मा अब गोठ एक ऐसन विषय के जिन हजारों बछर जुन्ना है, हजारों बछर ले मानव समाज मा घर करके बैठ गए है। ये विषय है अंधविश्वास के। अंधविश्वास कईयों बारी खाली एक गलत धारणा नहीं होवे, वो डर पैदा करते। और जब डर मन मा हावी हो जाते तब मनखे सच ल देखना बंद कर देते। अंधविश्वास में बूढ़े लोगन मन फिर बिना तर्क के बिना सच जाने ऐसन फैसला ले लगते जेखर बड़ा नुकसान होते। उन्हें समाज मा ऐसे लोगन घलो होते जिन विज्ञान अनुभव और तर्क के आधार मा वो धारणा मन ला चुनौती देते। अंधविश्वास ले विश्वास तक के ये यात्रा आसान नहीं होए। और आज मैं ऐसनेच एक सफल यात्रा के बारे में आप मन ला खचित बताना चाहत हूँ। संगवारी हो, असम मा एक ठन चिरई पाए जाते। वो चिरई के नाम है हर गिला। हर गिला एक दुर्लभ चिरई है। ये प्रकृति ला स्वच्छ रखे मा महत्तम के भूमिका निभाते। फिर असम के कुछ क्षेत्र मन मा लंबा बखत तक इला अशुभ माने जात रहिस। लोगन मन इला अपन तीर तखार मा देखना पसंद नहीं करत रहिन। कईयो घाव वो पेड़ मन ला घलो काट दिए जात रहिस जेमे हरगिला के घोसला बने होत रहिस। सोचाओ, एक ऐसन चिरई जिन पर्यावरण के सफाई मा सहायता करते, उही हरगिला लोगन मन के डर के शिकार बन गए रहिस। इही दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन हा ये सब देखिन। वो लोगन के मन मा बैठे गलत धारणा ला बदले के संकल्प लेन। वो माई लोगिन मन ले गोट करिन। वो लोगन मन ला विज्ञान के आधार मा समझाइन। धीरे धीरे माई लोगिन मन ये अभियान ले जुड़े लगिन। फिर एक बड़का बदलाव शुरू हुईस। जेन चिरैला कभू अशुभ मान के भगाए जात रहिस, उही गांव के चिन्हारी बने लगिस। हजारों ग्रामीण माई लोगिन मन हर गिला ल बचाए बर आघू आइन। आज वो मन ल हर गिला आर्मी के नाव ले जाने जाते। ये माई लोगिन मन समाज के संग संघर्ष घलो करिन। समाज ल समझाए बर दिन रात काम करिन औ अंधविश्वास ल पाछू छोड़ करके रहिन। वो मन दिखाइन कि जब सही जानकारी पहुँचाए जाते त कईयों बछर जुन्ना सोच घलो बदल सकत हे। संगवारी हो, मैं अक्सर कहिथौं कि जेन खेल थे वो खिलथे। आज देश में ऐसन युवा मन के संख्या बहुत तेजी ले बढ़ा थे जेन मन खेलत घलो हैं और खिलत घलो हैं। पाछू के तुलना में अब कहूँ ज़्यादा युवा मन खेल ला कैरियर के रूप में अपनावत हैं। मुला नागालैंड के दो

अइसने प्रयास मन के बारे म जानकारी मिले हे जेन बहुते दिलचस्प हे। पहली प्रयास हे नागालैंड बेबी लीग। नाव सुन के आप मन ल खचित लगत होही, ये बहुते नानुक लइका मन के कोनो साधारण लीग होही। फिर ऐसा नहीं है, ये 5 ले 10-12 बछर के उम्र के नान नान लइका फूल असन लइका मन के एक असाधारण लीग है। और ये लइका मन के फुटबॉल खिलाड़ी मन के एक ऐसन लीग है जेन उनकर गतिला और प्रतिभा खातिर वो मन ला प्रेरित घलो करते और उनकर पहचान घलो बनाते। एकर शुरुआत नागालैंड के ज्यादा ले ज्यादा लइका मन ले फुटबॉल ले जोड़े के संग होय रहिस। 5 ले 12 बछर तक के लइका और नोनी मन एमे हिस्सा ले सकत हैं। ये लीग अब अपन 3 बछर पूरा कर चुके हैं। ये लीग के लइका मन के मन में बहुते अच्छा प्रभाव पड़े है। संगवारी हो, नागालैंड में एक ठन औ बने प्रयास हुआ थे। ओखर नाव है नागालैंड वुमन फुटसल लीग। हो सका थे आप मन बर ये फुटसल एक नवा नाव हो ही। मैं आप मन ला बतावत हूँ कि फुटसल ला इंडोर फुटबॉल घलो कहे जाते। एमे एक टीम में खाली 5 खिलाड़ी होते। खेल के मैदान घलो फुटबॉल के मैदान ले बहुत छोटे होते। यही कारण खिलाड़ी मन ला तेज फैसला करना होते। वो मन ला अपन तकनीक और कौशल के बेहतर उपयोग करना पड़ते। नागालैंड के महिला फुटसल लीग हमर बेटी मन ला अपन प्रतिभा दिखाए के बने अवसर देवत हे। मैं ऐसन पहल खातिर नागालैंड के लोगन मन के सराहना करत हूँ। ऐसने प्रयास देश के आने हिस्सा मन ला घलो प्रेरणा देते। संगवारी हो, ये तकनीकी के युग है। हर दिन नवा शोध होवत है, नवा नवा AI नवाचार आघू आवत है। ये दौर में एक सवाल बहुते महत्वपूर्ण है, लोगन मन के रचनात्मकता ला कैसे बचाए रखे जाए। नवा तकनीक के संग आघू बढ़त हम अपन जड़ ले कैसे जुड़े रहन, ये सवाल के समाधान खोजे है नालंदा विश्वविद्यालय है। हजारों बछर जुन्ना हमर नालंदा विश्वविद्यालय अब नवा अवतार के रूप में भारत के भाग्य गढ़त है। 2 बछर पाछू मोला नालंदा विश्वविद्यालय के नवा परिसर के लोकार्पण के अवसर मिले रहिस। नालंदा विश्वविद्यालय है शास्त्रार्थ के हमर जुन्ना परंपरा ल फिर जीवंत करे है। शास्त्रार्थ खाली अपन बात रखे के माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन के एक अनुशासित प्रक्रिया है। एमे तर्क के संग तथ्य के संग अपन बात कहना बहुते जरूरी होते और ओमे आप मन के महारत होना चाहिए। आने मन के विचार ल धैर्य ले सुने और समझे के सीख घलो ये शास्त्रार्थ के प्रक्रिया ले मिलते। मुला खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय है इला अपन दीक्षांत समारोह के हिस्सा बनाइस। एमे भाग लेवैया करीबन आधा विद्यार्थी मन आने देश ले आए रहिन। एक जुन्ना परंपरा ला आज के बखत ले जोड़े के ये प्रयास बहुते सराहनीय है। मैं एखर बर नालंदा विश्वविद्यालय ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। मैं देश के आने विश्वविद्यालय मन ले घलो आग्रह करूँ कि वो मन ऐसने पहल में विचार करें। संगवारी हो, जड़ मन ले जुड़े रही के युवा मन ला नवा तकनीकी बर तैयार करे के एक ठन औ बने प्रयास हुआ थे। दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कृत्रिम विद्वता और डाटा विज्ञान में BTech कार्यक्रम शुरू करैया है। ये आधुनिक तकनीक ला भारत के पारंपरिक ज्ञान ले जोड़े के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एखर ले भारतीय भाखा बनबर नवा AI टूल तैयार करे मा सहायता मिली। हमर जुन्ना ग्रंथ और पांडुलिपि मन ला डिजिटल रूप में संरक्षित करे के काम ला घलो नवा गति मिली। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ला ये प्रयास खातिर
गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना।

मना देवत हौ। संगवारी हो, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के आने आने हिस्सा तक पहुँचत है। हमर गीत संगीत और अध्यात्म ल दुनिया भर के लोगन मन जानत हैं और अपनावत हैं। भारत ले हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाव के एक देश है। वहाँ भारतीय मन के संख्या करीबन 100 है, शायद एखर ले घलो कम हो ही। एखर बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ले जुड़े एक बहुते अच्छा प्रयास वहाँ होवत है। वहाँ स्पेनिश बोले वाला कुछ लोगन मन एक टीम बनाए हैं। ये टीम के नाव हैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना। टीम के सदस्य मन मिल के वैदिक साहित्य के अध्ययन करत हैं। वो मन वैदिक मंत्र मन के उच्चारण घलो सीखत हैं। वो मन ला एखर कोनो औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिले है, फिर वो मन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के वैदिक मंत्र मन के सही उच्चारण सीखे हैं। आज वो मन कईयों मंत्र के बहुते अच्छा जाप कर लेते हैं। इमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मयम सम्मिलित है। भारत ले अतका दूर रही के हमर परंपरा मन ला सीखे के उनखर ये प्रयास बहुते प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना वहाँ के सबो सदस्य मन ला उनखर प्रयास खातिर शुभकामना देवत हौ। मैं ऐसने सबो लोगन के हृदय ले सराहना करत हौ जिन भारतीय संस्कृति ल दुनिया भर में लोकप्रिय बनाए खातिर सरलग प्रयास करत हैं। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मेघालय के चिन्हारी बादल मन ले है, सुंदर दृश्य मन ले है। जिन मेघालय जाते ओला उहां के लोगन मन के अपनापन घलो लंबा बखत तक सुरता रही थे। फिर मेघालय के एक ठन औ विशेषता है जेखर मैं आज मन की बात में आप मन ले चर्चा करना चाहत हूँ। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ वाला रूट। ये रूट ब्रिज मन के कहनी बहुते रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिन या कुछ बछर में नहीं बने, इला तैयार होए में कईयों दशक लगते। रबर के पेड़ के जड़ मन ला धीरे धीरे दिशा दे जाते। ये जड़ मन ला जलधारा मन के पार ले जाए जाते। बखत के संग उही जड़ एक मजबूत ब्रिज के रूप ले लेते। ये ब्रिज मन के एक औ विशेषता है, ये जीवित ब्रिज हैं। बखत बीते के संग ये औ मजबूत हो जाते। एमे मेघालय के लोगन मन के सृजनशीलता दिखाई देते। इनखर पाछू कईयों बछर के धैर्य और प्रकृति के प्रति गहिर सम्मान है। ये ब्रिज बताते कि मनखे प्रकृति के संग मिलके कतको अद्भुत जिनिस बना सकत हैं। ये हमार देश के, ये धरती के धरोहर हैं। अब भारत हा मेघालय के रूट ब्रिज मनला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क मा शामिल कराए बर आवेदन करे है। संगवारी हो, ऋतु परिवर्तन के कारण ये रूट ब्रिज मन के आघू कईयों चुनौती घलो आते। ऐसन बखत मा मेघालय के लोगन मन ये प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के जिम्मेदारी घलो बने असन निभाए हैं। पहली ये पता लगाना घलो आसान नहीं रहीस कि ऐसन ब्रिज मन के संख्या कतका है। स्थानीय लोगन मन खुदे एखर गिनती शुरू करिन। एखर बाद समुदाय मन ये ब्रिज मन के देखभाल के जिम्मेदारी घलो संभालिन। आज स्थानीय लोगन मन 120 ले ज्यादा रूट ब्रिज मन के देख रेख करत हैं। कुछ टीम मन हर बछर ये पुल मन के स्थिति के जांच करते। कुछ लोगन मन ह तीर तखार के क्षेत्र ला मजबूत बनाए खातिर नर्सरी घलो तैयार करे हैं। ये रकम के उनखर संरक्षण खातिर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गए है। आप मन देखे हो ये बछर हेलीवार जिला पद्म पुरस्कार ले सम्मानित करे गए है। वो मन अपन जिंदगी के 50 ले ज्यादा बछर ये रूट ब्रिज मन के देखभाल में लगाए हैं। उनखर समर्पण हम सबो मन बर प्रेरणादायक है। संगवारी हो,
आप मन कभू

ये रूट ब्रिज के यात्रा करे हो हु था ओखर फोटो सोशल मीडिया मा खचित साझा करो। आप मन के फोटो आने लोगन मन ला घलो मेघालय के ये अनोखा धरोहर के बारे मा जाने खातिर प्रेरित करही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हम सबो मन चाहथन कि हमार गांव साफ सुथरा होवे, हमार शहर सुंदर दिखे। फिर शायदे कभू रुक के ये सोचे जाते कि हमार तीर तखार मा जेन कचरा जमे होते ओला कौन साफ करते। ज्यादातर लोगन मन तो यही मान के चलते कि ये कोनो औ के जिम्मेदारी है औ वो सफाई करही। फिर हमार बीच कुछ ऐसन लोगन घलो होते जेन अपन सोच ले हमन ला बहुत प्रेरित करते। मोला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला के ब्यावरा के कुछ बहनी मन के बारे में जाने के मौका मिलिस। वो मन अपन तीर तखार में बगरे प्लास्टिक कचरा ला हटाए के संकल्प लेन, ये नहीं सोचिन कि कोनो आ के बदलाव लाही। वो मन खुदे शहर भर ले प्लास्टिक कचरा और खाली बोतल इकट्ठा करना शुरू करिन। धीरे धीरे ये प्रयास आगू बढ़त गईस और फिर वो प्लास्टिक ला इको ब्रिक्स में बदले जाए लगिस। आज उही इको ब्रिक्स के उपयोग सार्वजनिक स्थान मन ला सुंदर बनाए में करे जात है। राजगढ़ में पाछू कुछ महीना में सैकड़ों किलो प्लास्टिक ला रिसाइकिल करके ओखर बेहतर उपयोग करे गए है। माने जेन प्लास्टिक पहली शहर में प्रदूषण फैलावत रहीस, आज उही ये बहनी मन के प्रयास ले शहर के सुंदरता बढ़ाए में योगदान देवत है। मैं व्यावरा के सबो बहनी और ये अभियान ले जुड़े संगवारी मन ला बधाई देवत हों। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मोला कईयों लोगन मन पाती लिख के एक खास विषय में गोट करे के सुझाव भेजे हैं। ये विषय गणेश उत्सव ले जुड़े है। वैसे त गणेश उत्सव में अभी बने बखत बाकी है, फिर लोगन मन है ये आग्रह करे हैं कि ये विषय में अभिचे बात होना चाहिए। असल में गणेश जी के मूर्ति बनाए के काम बहुत पहली शुरू हो जाते। मूर्ति बनाए वाला मूर्ति के व्यापार ले जुड़े लोगन मन अभी ले सक्रिय हो जाते। यही पाए के मोर आप सबो मन ले एक आग्रह है। आप मन प्रयास करो कि आपके घर सोसाइटी या तीर तखार के ठिया मा गणपति बप्पा के जेन मूर्ति स्थापित हो वो हमर देश के माटी ले बने हो। वो हमर अपन कुम्हार और स्थानीय कलाकार मन के हाथ तैयार हुए हो। जेन लोगन मन गणेश जी के मूर्ति बनाते वो मन ले घलो मोर आग्रह है कि वो मन माटी के मूर्ति ल प्राथमिकता देवें और जेन लोगन मन मूर्ति बिसाते वो मन घलो ये खचित देखें कि गणपति बप्पा के मूर्ति का के बने हैं और कौन देश में तैयार हुए है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले बने मूर्ति खचित झन बिसाएं। संगवारी हो, माटी के मूर्ति पूजा के बाद सहज रूप में पानी में विलीन हो जाते। एखर ले हमार नदिया तरिया और पर्यावरण के रक्षा होते, हमार आस्था घलो बने रही थे और प्रकृति के प्रति हमार दायित्व घलो पूरा होते। जब हम स्थानीय कारीगर मन ले मूर्ति बिसाथन हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प ला मजबूत करथन। मोला विश्वास है कि ये पैत गणेश उत्सव मा और ऐसने हर उत्सव मा हम ऐसने सब्बो बात ऊपर खचित गंभीरता ले सोचबो और देश हित मा कदम घलो उठाबो। संगवारी हो, हमार देश के सबले बड़का शक्ति हमार देश के लोगन मन है। देश के आने आने हिस्सा मा होवत नानुक बड़का प्रयास हमन ला बहुत कुछ सिखोते। ये प्रयास बताते कि जब मन में संकल्प हो और समाज के साथ मिले तो कोनो भी बड़का बदलाव लाए जा सकत है। आप मन अपन तीर तखार में होवत ऐसन प्रयास मन के बारे में मुला खचित लिखत रहो, अपन विचार और अपन सुझाव भेजत रहो। हो सकत है आपके तीर तखार के कोनो नानुक पहल जम्मो देश भर प्रेरणा बन जाए। अवैया महीना हम फेर मिलबो, देशवासी मन के कुछ नवा प्रयास मन के चर्चा करबो। तब तक आप मन अपन

0: और अपन परिवार के ध्यान रखाओ। और हाँ, जल संचय तो करने करना है, बरसात के पानी के एक एक बूंद ला हमला बचाना है। कैच द रैन, ये अभियान थोड़को ढीला नहीं होन देना है। तब मोर विशेष आग्रह है, वर्षा के बूंद बूंद पानी हम मिल के बचावन। गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद, जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज रात 8 बजे सुन सकते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का छत्तीसगढ़ी अनुवाद। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:01 हुए हैं। प्रस्तुत है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं पंकज उदास की गाई ये गजल। शायर हैं नफीस आलम।

0: ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में सुर फिल्म का ये गीत। संगीत दिया है MM करीम ने, गीत लिखा है निदा फासली ने।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सबे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: कार्यक्रम सबरंग में सुनते हैं सचेत टंडन और परंपरा टंडन का गाया ये गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत से सजाया है आशीष पांडा ने।

0: वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजिए और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: कार्यक्रम में आप सुनिए मनोज मुंतशिर का लिखा ये गीत, संगीत से सजाया है MM क्रीम ने, आवाज़ है पलक मुच्छर और MM क्रीम की। फिल्म का नाम है बाहुबली द बिगनिंग।

अदनान सामी के गाय गीत के साथ कार्यक्रम सबरंग में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 होने को है। कुछ ही पलों में कार्यक्रम आप मन के गीत हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

एकरे संगी कार्यक्रम आप मन के गीत मा आप मन के स्वागत करत हूँ और आप मन ला सुघर सुघर गीत सुनाए बर फरमाइश पाती लेकर आए हूँ मैं भावना शर्मा तो झोंको मोर मया भरे जय जोहार संगी हो कार्यक्रम के पहली गीत ला सुने बर फरमाइशे ईमेल और पाती पठोए है हमारे श्रोता संगवारी मन अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ ले रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान कर्मा चौक लोहाड़ी कवर्धा ले अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी साहू खुशांत और निशांत साहू चिरमरी कुरासिया कालरी ले इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह और राम सहोदर रसेड़ा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार संध्या कीर्ति कुमार और डिकेश साहू बडिंगखेड़ा पंजाब ले मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा कोरासी भैंसा रायपुर ले पवन कुमार साहू कांति देवी साहू पंकज साहू सुष्मिता और दीपिका साहू ग्राम रेवा बेरला ले अजय पांडे अदिति और अनन्या पांडे रायपुर ले प्रतीक मिश्रा और शैल मिश्रा बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारी अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारी धसीवा ले छेदूलाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा और अल्पना यादव दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाव यादव कुमारी रानू खुशी प्रवीण साहू और सी एल यादव चूड़ी लाइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी रिहाना बेगम और मोहम्मद साजिद सबो झनमन सुनना चाहत हो लता खापरडे और अनिता वासनिक के स्वर में ई गीत तो आवा सुनन ई सुघर गीतला

बिजली कड़कत हे, बादल गरजत हे, फिर पानी ह नहीं बरसत हे। जब हे पानी गिरही तबे भुइयां की प्यास है बुझी, तगोरा है संगी झमाझम पानी के।

आवाव अब सुनाई जाए माधव चंद्राकर और संगी मन के स्वर मा ये गीत और ये गीत ला पसंद करे हैं हमार ए संगवारी मन पोटियागला दुर्गले संजय साहू सुजाता साहू शशांक और सीमा साहू मिलाई गढ़ले रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिंपल बाबू प्रशांश और भाव्या देवांगन ग्राम सलोनी राजनांदगांव ले पुरानिक राम साहू सीताबाई साहू तोरण लाल और खुशबू साहू ग्राम कोल्हापुरी दुर्गले सूरज भान साहू और कमलाबाई बिनौरी फिंगेश्वर ले टीकम राम साहू योगेश्वर साहू हेमलता और टीकेश्वरी साहू मेचकर सोंढूर ले भूपेंद्र नाग पूर्णिमा नाग लिखित और तरुण दीप नाग अमली डी ले खिलेश्वर सिंह चौहान और मालती देवी चौहान ग्राम क्रोपर ले अभिजीत प्रांजलि प्रेमा और मंगलदास साहू राजीम ले गोप कुमार विशाखा विमल सानिध्य अश्विना और मयंक शर्मा बिलासपुर ले माही सात्विक पीयूष माधुरी और कामना पांडे गोल चौक रायपुर ले तृप्ता जोशी और आर्या श्री जोशी श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सियावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु और अंकित देवांगन ग्राम खट्टी ले सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदनी शर्मा ओंकार शर्मा ईशोराम साहू मालती साहू और लोकेश साहू मोपका भाट्टापारा ले दयालु राम वर्मा तेज राम वर्मा सहदेव रामजी और चिरंजीवी वर्मा जय मा कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिरी गातापारली धनेश्वरी साहू ओम प्रभा साहू बिंदेश्वरी साहू नागेश्वरी साहू चमेली साहू भूमिका साहू मोनिका और पूनम साहू त आवा सुनन माधव चंद्राकर और संगीमन के गाय एक गीतला

कार्यक्रम का अगला गीत ला आवाज सुनन ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकर के स्वर मा ये गीत। ये गीत ला सुने भर फरमाइश पाती पठोए हैं। लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी। ग्राम सिंगारपुर ले चिंताराम धुर्वे, कामिन चंद्रध्वज और सानू धुर्वे। सलोनी घुमका देव ले देवचरण साहू, हेमा वेदांत और वैभव साहू। बिलाईगढ़ ले जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी और तृप्तेश देवांगन। ग्राम बोड़गान छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रीश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। भरी टोला टोंडी बालोदली नमित कुमार गौतम, पीहू प्रियंका नीतू और मुरली गौतम। भाटापरा ले नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु और आरती यदु। दतरंगी ले विश्राम यदु, पार्वती और रीना यदु। शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया ले दरिया मल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी और गांधी बाग नागपुर ले अशोक कुमार सावलनी। पट पर डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंत्री ध्रुव। तो आवाब सुनन आप मन के फरमाइश में ई गीत।

ए गीत बर पातिपट होए हैं। बाजार वार्ड महासमुंद ले भीषमदास, नर्मदा, हीरमनी, दीपक औ लक्षदास, ग्राम भड़गा कुदवा गुड़ानले श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी मरावी, रजनी राहुल औ पूजा मरावी, भाटापराले दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम औ सौरभ रावत, बेमेतराले राज औ सारिका वैष्णव, शांतिनगर भाटापराली रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, सादिया खान, अयाज अल्फैज खान, बिल्हाले शेख नासिर, मजहबीन बानो, कोटा रायपुरले योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा औ ओजल वर्मा, रायपुर भनपुरीले कृष्णा समीक्षा, रियांश विक्की, प्रगति औ ईशान्या शर्मा, जयमा कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिरी गाताली, कुमारी लावण्य साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार साहू, पुष्पराज और औ प्रभु राम साहू, रामानिया चौक भाटापराले मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नईम औ मोहम्मद ताहिर, हट्टी बाजार भाटापराले मोहम्मद जावेद, एकता यदु, पूजा यदु औ रेश

निषाद देवरी भाटापारली गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा और गणेश मिश्रे भाटापारा दत्रेंगीले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा पावर हाउस भिलाई जामुल्ले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ वर्मा संजय प्रधान और पूजा प्रधान रामनगर रायपुरले राजेश अंबादे शशिकला अंबादे और पूजा अंबादे और सिमगाले लवकुश सेन प्रहलाद सेन आदित्य आशीष और प्रकाश सेन त आवा सुनन इस सुगर गीतला माया वैद्य के स्वर्मा

कार्यक्रम के अन्तमा अब सुनन खुम चन्द साहु औ सङ्गी मनकी स्वरमा यी गीत औ यी गीतलाई सुने भर फरमाइस पाती पठो हे हाम्रो यी श्रोता सङ्गी मन भाटापाराले बचकाबल मोतीलाल यादव डाक्टर बसन्त भृगु विनय ठाकुर सोनाडीले सुब्रत चौधरी छत्तीसगढ भूर सुदाले सन्तोषी सेन ज्योति सेन नेहा सेन मीनाक्षी सेन पलक सेन औ शारदा सेन पहन्दा कोरबाले सम्मेलाल कुर्रे सावित्री देवी कुर्रे कटोरा तालाब रायपुरले मोहनलाल देवाङ्गन प्रभा देवी देवाङ्गन सरक बुन्दियाले गब्बर साहु औ निर्मला देवी साहु सिमगाले भारती सेन विजया सेन ललिता सेन रामेश्वरी मीरा सेन सुनन्दा पिंकी औ पुष्पा सेन सिमगा छत्तीसगढले सविता जैन प्रदीप जैन औ सङ्गी हत्नी पारा भाटापाराले चोवाराम वर्मा मुकेश वर्मा दुलारी वर्मा औ दुर्गा दुर्गेश्वरी

वर्मा, कोटा रायपुरले अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा औ दिनेश सेन, देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मीणा सोनवानी, गीतिका गुड़िया, पीएल निर्मलकर औ श्रद्धा निर्मलकर, आप मन है कन्नेवाड़ा ले, रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा औ करुणा वर्मा, लिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, रिचा गायत्री वैष्णव, भीजम दास मानिकपुरी, नेहरू वार्ड भाटापारा ले प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू औ राघवेंद्र साहू, महाया ग्राम दुरचूरा ले फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी औ प्रीतम कुमारी साहू, करही बदले पुरुषोत्तम निर्मलकर, शादा निर्मलकर, देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मीणा सोनवानी, कुमारी लोचन, रुआ बांधा शनिचरी बाजार ले सुनील सुशील जैन, कल्पना जैन, सिया जैन, सौरभ जैन औ सौर्य जैन, साथी शुभम जैन। तो आवाओ सुनन आप सबकी पसंद में ये सुघर गीतला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आप मन के गीत मीडियम वेव और एफएम
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
3: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर

0: आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। सामयिक सुझाव का विषय है अरहर की उन्नत खेती।
3: खरीफ दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान है। चना के बाद अरहर दूसरी मुख्य दाल वाली फसल है। इसमें लगभग 22% प्रोटीन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अरहर की खेती पर। जलवायु एवं भूमि। अरहर की फसल आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। फसल को प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि के लिए गर्म नम जलवायु और पौधों पर फूल आने से लेकर फली और दाने बनते समय तक शुष्क मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है।

0: इस फसल के लिए समुचित जल निकास वाली हल्की से लेकर भारी मिट्टियां खेती के लिए उपयुक्त रहती है। भूमि की तैयारी। अरहर फसल के लिए भूमि की तैयारी मानसून प्रारंभ होते ही एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई और देसी हल से या ट्रैक्टर द्वारा दो बार जुताई करके और पाटा लगाकर समतल करना चाहिए। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिला देना चाहिए। इसके बाद अंतिम जुताई के समय बुआई के पूर्व क्लोरोपायरीफास 1.5% चूड़ 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाना चाहिए, जिससे दीमक जैसे कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। बुआई के पहले जल निकास के लिए खेत में चारों ओर नालियां बना देना चाहिए। उन्नतशील किस्मों का चयन। जमीन के प्रकार, बुआई का समय और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किस्मों का सुझाव विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, जैसे उपास 120। यह किस्म 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उकठा रोग के लिए संवेदनशील, मध्यम ऊंचाई होती है। उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आशा। इस किस्म की अवधि 160 से 180 दिन तक होती है। उकठा और बांझपन के लिए निरोधक किस्म है। खेत के मेड़ों हेतु उपयुक्त है। इसका उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नंबर 148। ये किस्म 160 से 180 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए सहनशील है और बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी उपज क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रगति। यह किस्म 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उकठा रोग के लिए निरोधी और बौनी किस्म है। यह पेड़ी फसल हेतु उपयुक्त है। उपज क्षमता 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लक्ष्मी। यह किस्म 180 से 200 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए निरोधक किस्म है। खेत के मेड़ों में हेतु उपयुक्त किस्म है। उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बुआई का समय। किसान भाइयों, अरहर की बुआई मानसून के ऊपर निर्भर करता है। साधारणतः बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक रहता है। देर होने की स्थिति में इस फसल की बुआई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। बीज की मात्रा। अरहर की बुआई के लिए बीज की मात्रा बीज के आकार और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सामान्यतः मध्यम आकार और उच्च गुणवत्ता वाला बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कतार से बोनी के लिए लगता है। अरहर के साथ साथ सह फसली खेत में अरहर की बीज दर शुद्ध फसल के बराबर रखनी चाहिए। बीजोपचार। किसान भाइयों, बुआई के पूर्व बीज को कवकनाशी दवा बावस्टीन या थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने के बाद राइजोबियम और पीएसबी कल्चर की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। बुआई का तरीका। अरहर के बीज कतारों में 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली जातियों को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर बोना चाहिए। मध्यम और देर अवधि वाली किस्मों के लिए कतारों के बीज 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीज 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। बुआई हल के पीछे पंक्तियों में या सीड ड्रिल से करना चाहिए। उर्वरक की मात्रा। किसान भाइयों, उर्वरकों की उचित मात्रा का निर्धारण मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना लाभदायक होता है। अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 60 किलोग्राम स्फूर और 20 से 30 किलोग्राम पोटास बुआई के समय कतारों में डालना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। सामयिक सुझाव का विषय था अरहर की उन्नत खेती। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का हमारे आज के घर आंगन कार्यक्रम में। आपके साथ आज के क्रम में मैं हूं विनीता। स्वीकार कीजिए मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। बहनों देखिए, मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और बदलते मौसम में बारिश की फुहार ने दस्तक देनी भी शुरू कर दी है। इस बारिश की बूंदों के साथ प्रकृति में आने वाला ये बदलाव हम सभी के मन को भाने भी लगा है। साथ ही साथ मौसम में होने वाले परिवर्तन हम सभी के दैनिक जीवन पर भी असर डालते हैं और हमारे पहनावे से लेकर हमारी गतिविधियों तक। मौसम परिवर्तन के बारे में हमें बच्चों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे उन्हें दिन की योजना बनाने, ऋतुओं को समझने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। श्रोताओं साथ ही साथ इसके आधार पर वो अपने जीवन में सही निर्णय भी ले सकते हैं। सोच समझकर वो मौसम परिवर्तन के अनुसार अपनी दिनचर्या को बैलेंस कर पाते हैं। बच्चों को जलवायु और मौसम के बारे में सिखाने से उन्हें पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं से भी अवगत कराया जा सकता है। बहनों, मौसम के पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध को समझने भी बच्चे लगते हैं, और जिससे कि प्रकृति के प्रति हम उनकी और अपनी जिम्मेदारी की भावना को विकसित भी कर पाते हैं। बच्चों में ऐसी जागरूकता उन्हें पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। मौसम की स्थितियों और जलवायु परिवर्तन का ज्ञान सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने में भी योगदान देता है। जो बच्चे गंभीर मौसम की घटनाओं से जुड़े जोखिमों को समझते हैं, उन्हें आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा सावधानियां बरतने और उचित प्रतिक्रिया देने की संभावना भी अधिक होती है। श्रोताओं, बच्चों को बिजली, ओलावृष्टि और अन्य गंभीर मौसम की घटनाओं से निपटने का तरीका सिखाने से उन्हें सुरक्षित रखने में भी मदद मिल सकती है। इन घटनाओं के कारणों के बारे में जानने से इनके प्रति भय भी कम हो जाता है, जिससे बच्चों में डर पैदा करने वाली चीज़ जिज्ञासा का विषय बन सकती है। मौसम और उनके आसपास की दुनिया के बारे में बच्चों को सिखाने वाली किताबें जैसे वीडियो और एक्टिविटी जैसी चीज़ें बच्चों को इन सब के प्रति जागरूक करने का एक बेहतर माध्यम है। बहनों, बच्चों को मौसम और जलवायु के बारे में दी जाने वाली शुरुआती जानकारी जीवन भर के लिए रुचि भी जगा सकती है और उन्हें मौसम विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। कम उम्र में ही हम उनकी रुचि को बढ़ावा देकर उनमें आत्मविश्वास की भावना जगा सकते हैं और उत्साह के साथ इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद भी कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को पर्यावरण और जलवायु के प्रति सचेत रखें, उन्हें इसकी जानकारी दें। और अब वक्त हो गया है कि हम सुने ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अभिनेत्री से।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओं, अब वक्त हो गया है कि हम चलें हमारे क्रम घर आंगन मेल में, और आज आपके मेल बहुत सारे हमें मिले हैं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन हैं जो श्रोता जिनका मेल हम शामिल कर रहे हैं। ये मेल हमें भेजा है सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा और इनके सभी साथी। इनकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म दामिनी का ये गीत, जिसमें आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत लिखा है नदीम समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें लिखकर भेजी है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रज़ा और गौसिया फातिमा ने, और इनके परिवार के सभी सदस्य इनकी पसंद पर। आइए सुनते हैं फिल्म निगाहें का ये गीत, जिसमें आवाज़ है मोहम्मद अजीज़ की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, इनकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म हंसते जख्म का ये गीत, जिसमें आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की। गीत लिखा है कैफ़ी आज़मी ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

बहनों, इस अंतिम गीत के साथ आज के घर आंगन मेल में बस यहीं तक। और अब वक्त हो चला है कि हम लें हमारे कार्यक्रम से भी विदा। लेकिन जाने से पहले नोट कर लीजिए हमारे घर आंगन मेल का पता, gharanganair@gmail.com। इस पते पर आप हमें अपने मेल भेजें। साथ ही साथ हर शनिवार सुबह 10:30 से 11 के बीच हमारे फ़ोन लाइन चालू रहते हैं और आपकी बातें हमसे आप साझा कर सकती हैं। इसके लिए फ़ोन नंबर है 231-917 और 231-918। बाहर के कॉलर कोड लगाएं 07774। तो आपके फ़ोन कॉल्स और आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ें और हमारे कार्यक्रम की समीक्षा और हमारे कार्यक्रम कितना पसंद आ रहा है इस बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे यानी विनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में मैं आज आपके साथ हूँ, आपके रेडियो साथी धरती। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं धर्मवीर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है आनंद बख्शी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। जलगांव जंक्शन से

दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, यूनिवर्सिटी कैंपस हनोई वियतनाम से प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, राजकुमारी डॉक्टर स्वर्णलता यूनेन, साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बीबी प्रियांशी, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, अन्विका, तनुश्री, पियरा बाजार झुमरी तलैया गिरडी झारखंड से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार गुप्ता, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश शॉ, सिया, जिया, टूशी, आयुषी, अनिरुद्ध, बाबू वसंत, लाल साहू और साथी हीरा और मोती, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती, चिड़िया और ओम भैया, राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नूलाल रजक और मुरली क्षेत्रीय, कुष्ठ बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागुने, पार्थ और हागुने परिवार के सभी सदस्य, सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल निशा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी सालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी सिकरा डावर, बेबी आयशा खत्री, सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेट मिठा, हल्का मिठा, ग्राम बुढ़गन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, मिट्टू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई, वैष्णव कॉलोनी सुनावत से मोहम्मद शादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार और नसीम बेगम, माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय, रुद्रांश प्रताप साहू, नागपुर से विठल जाधव और अनुसुईया जाधव, गांधीग्राम गुजर से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी कलवी, मुन्ना और हिमाक्ष, अकोला से सुयश राय, अलका राय, दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, सैना हसन और इब्राहिम। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में आप पेश हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में साजन फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण के, शब्द रचना है समीर के। इस गीत के फरमाइश करता है नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती, पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव और बेबी सिया यादव, जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीत यादव, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे और पुष्पाताई नारे, तनौरी तेलीवाला से निसाल सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, इंद्रानगर रायगढ़ छत्तीसगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम रजा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभानी, संगीता

आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य, छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, ग्राम सौंगा मगलोड से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार चंदन, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी, पप्पू और डप्पू, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, अम्भई सिल्लोड छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और प्रगेश, माफ कीजिएगा, यज्ञेश घोड़के, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कम्हाड़कर, श्रीमती सरिता कम्हाड़कर, प्रिंस एकांश कम्हाड़कर और अर्जुन कम्हाड़कर, साथ ही टुक टुक। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर साजन फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी, रिंकी गोस्वामी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी, तिलकनगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला, धनौरा बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, सज्जन के मास्टर, शिवांशु, रिशु, अक्षय कुमार, अभिषेक वी, चैतन्य कुमार, गावनथाना पंजाब से हरदिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, मन्नत गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, ग्राम अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रवान राजवाड़े, पबीता राजवाड़े, धिया काव्या और मंजू राजवाड़े, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कशनीजा, पूनम विशाल, प्रिया देशानी और निमित आहूजा, ग्राम पंचायत खुंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुर्नी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज के अंत में पेश है क्या यही प्यार है फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। संगीत दिया है साजिद वाजिद अली ने और शब्द रचना है जलीश राशिद की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, बुल्ढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और गजानन सोलनकर, पेंटर विजय सिंह महोबिया, कविता सिंह महोबिया, अनय अनाया महोबिया, सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, पल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा, संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल, सोपान तायड़े, नारायण इंगले और आशीष मोरेकर, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, कव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक और जयपाल यादव, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इस्टार और नरगिस खातून। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना

0: आज तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत

0: समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की

0: आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। गीत और संगीत दिया है ललित सेन ने।

अभी आपने सुना चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल। कार्यक्रम में अब पेश है उस्ताद सुल्तान खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में इरशाद कामिल का लिखा ये गीत। संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य।

कार्यक्रम के अंत में पेश है अभिजीत सावंत का गाया ये गीत। संगीत दिया है पिद्दू ने, गीत लिखा है समीर अंजान ने।

अभिजीत सावंत के गायज गीत के साथ कार्यक्रम गीत कंधा में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालें आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। शाम 5:05 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय है शाम 5:30। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। लोकगीत के कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कुछ सादरी लोकगीत। शाम 6:30 पर और रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा में शाम 7:05 पर आप सुनेंगे चंद गजलें। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व और स्वच्छता से ही स्वास्थ्य है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का सरगुजिया अनुवाद आप सुन सकेंगे रात 8 बजे। अनुवादक होंगे शिवानी गुप्ता, वाचक एवं संपादक होंगे देवेंद्र दास सोनवानी। रात 8:30 पर हम आप सबके लिए लेकर आएंगे सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। और रात 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा का कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी

1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आज शाम 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडाण, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, सोनहत, नवगई, गैना के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, खलीबा, पड़ौली, अमड़ी, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, ससकालो, ढेकी डोली, एरंड, नवापारा, घड़गांव, बरडाण, चोरकी पानी, दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, गट्टी बुड़ा, हल्दी मुंडा, ढोढ़ा डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 126 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव,

0: केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, ताल दादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। मीडियम वेव और एफएम पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या में बिट्टू कुमार की आवाज़ में ये भजन।

कार्यक्रम भजन संध्या में लीजिए सुनिए मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में पंडित नरेंद्र का लिखा ये गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे थे मनोज मुंतशिर का लिखा ये फिल्मी भजन। आवाज़ और संगीत दिया था सचेत और परंपरा टंडन ने। फिल्म थी आदि पुरुष। लीजिए सुनिए नीलम कटारिया की आवाज़ में ये गैर फिल्मी भजन।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

आप सुन रहे थे फिल्मी और गैर फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या। मीडियम वेव और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:23 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोता।

बहुत बहुत स्वागत है साथियों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। और मैं हूं आपका दोस्त घनश्याम। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार दोस्तों, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें सच बनाने का साहस हर किसी के पास नहीं होता। कई लोग सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब चुनौतियां सामने आती हैं तो वे कदम पीछे खींच लेते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और सपने उसका गंतव्य है। बिना सपनों के जीवन ऐसा है जैसे बिना दिशा के चलती हुई नाव। हर महान उपलब्धि की शुरुआत किसी न किसी सपने से हुई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। सबसे पहले किसी के मन में एक सपने के रूप में ही जन्मा है। लेकिन दोस्तों, क्या केवल सपने देखना ही पर्याप्त होता है? बिल्कुल नहीं। यदि सपने को हकीकत में बदलना है तो उनके लिए मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा और सबसे जरूरी बात, साहस के साथ साथ धैर्य रखना भी होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि साहस का मतलब डर का ना होना है, लेकिन वास्तव में साहस का मतलब है कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ना। साथियों, यदि आप किसी काम को डरते हुए करते हैं लेकिन फिर भी उसे करने का निर्णय लेते हैं तो वही सच्चा साहस है। जब कोई छात्र कठिन परीक्षा की तैयारी करता है, जब कोई युवा नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करता है, जब कोई खिलाड़ी हार के बाद फिर मैदान में उतरता है, यही तो है सच्चा साहस। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि असफलता के डर से टूटते हैं। लोग सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, यही सब सवाल आगे बढ़ने वाले कदम को रोक देती हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है बल्कि उसकी शिक्षक है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो क्या कभी चलना सीख पाएगा? ठीक इसी तरह जीवन में भी गिरना जरूरी है और साहस के साथ उठना भी जरूरी है, क्योंकि गिरावट हमें कुछ नया सिखा कर जाती है और साहस उसमें नया उमंग डाल जाती है। दोस्तों, कई लोग अपने हालात, परिवार, आर्थिक स्थिति या किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक हमारा जीवन नहीं बदलता। दोस्तों, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान जाग कर मेहनत करता है। रास्ता कठिन होगा, मुश्किलें आएंगी, कभी हार भी मिलेगी, लेकिन यदि आपके अंदर साहस है तो कोई भी बाधा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखकर साहस के साथ आगे बढ़िए। इसी के साथ आज का युवा सोच बस यहीं तक। सुनिए ये प्यारा सा गीत फिल्म जब वी मेट से। स्वर है मिका सिंह का, गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं प्रीतम।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे फरमाइशी क्रम युवा पसंद की ओर।

स्वागत है श्रोता साथियों आप सभी का क्रम युवा पसंद में। दोस्तों, बारिश का मौसम आ चुका है। रिमझिम फुहारे जब धरती को छूती हैं तो प्रकृति जैसी नई दुल्हन की तरह सज उठती है। भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू

ठंडी हवाओं का स्पर्श और बादल की गड़गड़ाहट, मानो प्रकृति में एक अनोखा संगीत की तानसी छेड़ दी गई हो। इसी संगीतमय समा में सुनिए लगान फिल्म का ये प्यारा संगीत। अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन और शान के स्वरों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं AR रहमान और इस गीत के फरमाइशकर्ता हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश और कालिंदरी लहरे। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

दोस्तों, बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की उम्मीद मन को छू जाती है। जब आसमान में काले घने बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो मन मोर की तरह नाच उठता है और निगाहें बरसात की राह देखने लगती है। और जब ये बादल मेहरबान होते हैं तो धरती का कण कण खुशी से झूम उठता है। इसी उल्लास और उमंग को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं फिल्म गुरु का ये खूबसूरत गीत। स्वर हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार के, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं एआर रहमान और इस गीत के फरमाइशकर्ता हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

साथियों, जब बारिश की बूंदें आती हैं तो अपने साथ खुशियों का संदेश लेकर आती हैं। बारिश का मौसम केवल प्रकृति के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे दिलों को भी भिगा देता है और एहसासों को और भी गहरा बना देता है। ऐसे ही भीगे भीगे जज्बातों की फुहार लेकर आता है फिल्म मोहरा का ये खूबसूरत सा गीत। स्वर हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं विजू शाह और इस गीत के फरमाइशकर्ता हैं सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, अनुष्का ऐश्वर्या, प्रीतम मनोज और मिथिलेश यादव। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

दोस्तों, जब बारिश आती है तो बूंदों की रुनझुन, हवाओं की सरगम और दिल की धड़कनें मिलकर एक संगीत का माहौल बना देते हैं, जिसमें मस्ती के साथ बेफिक्र होकर झूमने का मन होता है। तो इसी अंदाज में सुनते हैं हमारे आज के क्रम का अंतिम गीत फिल्म बागी से। स्वर है मोनाली ठाकुर की, गीतकार है कुमार, संगीतकार है मीत ब्रोस और इस गीत के फरमाइश करता है सारस ताल सोनगरा सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, भगत, हेमंत कुमार और राम खिलावन सिंह पैकरा। तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

साथियों, आप भी अपने पसंद के गीत सुनने के लिए हमें अपनी फरमाइश पत्रों और ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा पत्र भेजने का पता है, क्रम युवा पसंद, युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001। हमारा ईमेल आईडी है yuvapasandair@gmail.com। इसी के साथ क्रम युवा पसंद बस यहीं तक।

0: आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armani and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत

0: ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, पोस्टर बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन भी लोगों को योजना की जानकारी देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ग्राम और जनपद पंचायतों के साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण, बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभ की जानकारी दी जा रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का स्थान लेगी। श्रोताओं, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज जशपुर जिले में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। दवा पिलाने के लिए जिले में 1200 से अधिक बूथ बनाए गए थे। जो बच्चे आज दवा पीने से छूट गए उन्हें कल और परसों यानी 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। इस अभियान के तहत जिले में 1,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रोताओं, जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। यह रेल नेटवर्क रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ से जशपुर जिले के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक विकसित होगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 20 जून को जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में आयोजित जैविक किसान मेला और प्राकृतिक तथा जैविक खेती कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला है। श्री साय ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतर फसल चयन, प्राकृतिक और जैविक खेती तथा मजबूत बाजार व्यवस्था से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। अपने जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बगिया से जश लर्न कार्यक्रम का जिला स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जश लर्न कार्यक्रम बच्चों की गणितीय समझ विकसित करने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने तथा सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम को अब जिले के सभी विकास खंडों तक विस्तारित किया जाएगा। जशपुर पुलिस ने 24 जून को जिले के सभी 766 गांवों में एक साथ जन चौपाल लगाकर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को कम करने और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इन गांवों में जन चौपाल, विशेष ग्राम सभा और हेलमेट जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। श्रोताओं, जशपुर वनमंडल ने 19 जून को एक ही दिन में 2 लाख से अधिक सीड बॉल के प्रसार और रोपण कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में वनमंडल को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बीज गोला बना

0: बढ़ाबो जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो अभियान में ग्रामीणों विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भागीदारी निभाई। इस अभियान का उद्देश्य प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और हरित आवरण में वृद्धि करना है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत जिले में 11 बसें चलाई जा रही हैं, जिससे दूरस्थ गांव में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। इन बसों का संचालन कैलाश गुफा से बगीचा, सन्ना से चंपा, रनपुर से कांसाबेल, दोकड़ा से दुलदुला, जशपुर से हर्री, पत्थल गांव से नारायणपुर, दुलदुला से अबीरा जैसे विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे जशपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था तरुण प्रकाश शर्मा का। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मन की बात कार्यक्रम मा प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जल संरक्षण के संबंध मा वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए के करीन अपील। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मा घलो सुनेगीस। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर मा शून्य ले 5 बछर तक के लईका मन ला पोलियो के दवाई पिलाए गीस। और मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक बस्तर संभाग मा एक दो जगह मा मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे हे। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहिन है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन मा ध्यान केंद्रित करत हुए भारत समुद्र ले लेके आकाश तक ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत है। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम मा श्री मोदी हा कहिन है कि जून महीना मा स्वदेशी C-295 विमान के पहली उड़ान के संग ही भारत हा विमान क्षेत्र मा एक बड़का सफलता हासिल करे है। श्री मोदी हा कहिन है कि इही महीना कोलकाता मा 3 युद्ध पोत के जलावतरण करेगीस और DRDO हा लंबा दूरी के क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण करे है। प्रधानमंत्री हा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चर्चा करीन जेला दुनिया भर मा मनाएगीस। ए बार ए आयोजन 2,500 ले ज्यादा जगह मा होइस। भारत मा करोड़ों लोगन मन हा योग दिवस मा भागीदारी दिन। श्री मोदी हा अहमदाबाद मा विश्व योगासन चैंपियनशिप मा पदक विजेता एथलीट ला बधाई दिन। प्रधानमंत्री हा पश्चिम एशिया मा युद्ध के दौरान उखर अपील मा देशवासी मन के समर्थन और सहयोग बर आभार जताइन। प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जल संरक्षण के संबंध मा कहिन कि वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए जाना चाहिए। उन्होंने कहिन कि कैच द रेन अभियान मा जरा भी ढिलाई नहीं होना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मा सुनेगीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय मा जनप्रतिनिधि और मनखे मन संग ए कार्यक्रम ला सुनीस। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहिन कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद के सशक्त माध्यम बन चुके है। प्रधानमंत्री के विचार देशवासी मन ला प्रेरित करे के संगे संग समाज मा सकारात्मक परिवर्तन के रद्दा घलो प्रशस्त करत है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर मा शून्य ले 5 बछर तक के लईका मन ला पोलियो के दवाई पिलाएगीस। आज जउन लईका मन दवाई पिए ले छूट गए है उमन काली और परन दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाके दवाई पिलाही। ए अभियान के तहत प्रदेश मा 35,98,000 ले ज्यादा लईका मन ला पोलियो की खुराक पिलाए के लक्ष्य राखे गए है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा प्रदेशवासी मन ले अपील करे है कि ओमन अपन शून्य ले 5 बछर तक के हरेक लईका मल्ला पोलियो के 2 बूंद दवाई जरूर पिलाए। सीसाय हा अपन संदेश मा कहिन कि ए दवाई नहीं लईका मन के स्वस्थ सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के सुरक्षा के संकल्प है। ओमन हा सबो मनखे मन ले आग्रह करे है कि ओमन तीर तखार घलो ए सुनिश्चित करे कि कोनो भी लईका पल्स पोलियो के 2 बूंद ले छूटे झन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण ला साकार करे मा गांव के मुख्य भूमिका के उल्लेख करीन। नई दिल्ली मा राष्ट्रीय ग्राम विकास सम्मेलन मा श्री चौहान हा कहिन कि राष्ट्रीय विकास मा तेजी लाए बर विकसित भारत ग्रामीण योजना मा अवैया राज्य मन के योगदान के संग 1,51,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के प्रावधान करे गए है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बछर पूरा होए मा छत्तीसगढ़ मा काली 29 जून ले सहकारिता सप्ताह मनाए जाही। 6 जुलाई तक चलैया इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर मा सहकारिता ला बढ़ावा देबर आने आने कार्यक्रम आयोजित होही। रायपुर मा अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही। एमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप मा शामिल होही। सहकार मेला मा सहकारिता क्षेत्र के उपलब्धि और सफल मॉडल के प्रदर्शन करे जाए।

0: थी। 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह डाले अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण के काम के भूमि पूजन करे जाही। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा काली 29 जून के नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वां बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान पर परिचारणगत दिशा निर्देश जारी कर ही। ए शुभारंभ एनीमिया मुक्त भारत ले एनीमिया मुक्त भारत अभियान में परिवर्तित होए के कारण एनीमिया के विरुद्ध देश के लड़ाई में एक जरूरी मील के पत्थर साबित होही। ए अभियान में हीमोग्लोबिन परीक्षण, आयरन अल्पता, एनीमिया के प्रोटोकॉल आधार उपचार, व्यवस्थित फॉलोअप और लाभार्थी के संदर्भ देना और स्वास्थ्य आहार संबंधी आदत पर केंद्रीय परामर्श देना शामिल है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाचे समाचार गोती। पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम ला लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के वर्चुअल बैठक हुई। ए बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो शामिल हुई। ए बेरा में मुख्यमंत्री कहीन है कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण ले न केवल कार्यकर्ता के बल्कि जनप्रतिनिधि मन के घलो डिजिटल और तकनीकी ज्ञान बाढ़ी। बैठक ला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन महामंत्री पवन साय घलो संबोधित करीन। उन्हें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के प्रदेश प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही बैठक में ए अभियान के विस्तृत रूपरेखा और उद्देश्य के जानकारी साझा करें। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पेंशनर के हित में बड़का फैसला सुनात हुए 6वां और 7वां वेतन आयोग ले जुड़े 59 महीना के बकाया एरियर्स के भुगतान के रद्दा साफ कर दे है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल के खंडपीठ राज्य सरकार के रीट अपील खारिज करत हुए एकल पीठ के आदेश ला बरकरार राखी। अदालत था कि इनकी दो राज्य के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति के अभाव पेंशनर के वैध अधिकार ला प्रभावित नहीं कर सके। सरगुजा जिला के रामगढ़ में काली 29 जून ले दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव के आयोजन करे जाही। महोत्सव के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करही। महोत्सव के पहली दिन छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ऊपर आधारित आने आने लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत करे जाही। जांजगीर चांपा जिला के ग्राम कोरबी में आज हुए एक सड़क हादसा में 3 लोगों के मौत मौका में ही होगी। जानवा के मुताबिक बलौदा थाना क्षेत्र में अवैया भारतमाला रद्दा में मॉर्निंग वॉक में निकले 3 लोगों मल्ला अज्ञात वाहन अपन चपेट में ले लीस। मृतक में 2 डोंगरी और 1 कोरबी गांव के रवैया रहीस। हादसा के बाद चालक फरार होगी। उन्हें शक्ति जिला के भेड़ीकोना गांव में चारपहिया वाहन मोटरसाइकिल सवार युवक मल्ला टक्कर मार दीस। ए हादसा में 1 युवक के मौत होगी। उन्हें 1 आने युवक घायल होगी। इस बीच बेमेतरा के ग्राम राउरपुर में अचानक कच्चा दीवार के ढह जाए ले 2 बहनी के मौत होगी। उन्हें 1 माई लोगिन घायल होगी। जानवा के अनुसार दोनों लड़का घर के आंगन में बैठे रही, इसी दौरान दीवार भरभरा के गिर गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डहारले हाल ही में पद्मश्री ले सम्मानित दंतेवाड़ा के समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती के आकाशवाणी डहारले ले गए साक्षात्कार काली 29 जून के प्रसारित करे जाही। ए कार्यक्रम बिहनिया 10 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र डहारले प्रसारित करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 3 दिन तक बस्तर संभाग में 1-2 जगह में मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी देहे। उन्हें कुछ जगह में गरज चमक के संग गाज गिरे की संभावना जता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि आज ले अवैया 7 दिन तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ी। उन्हें उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज्यादा वर्षा की संभावना है। इस बीच आज बस्तर के संग प्रदेश के कतकोन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए की खबर है। जगदलपुर में गरज चमक और तेज हवा के संग जमके वर्षा हुई। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप बर ऑनलाइन आवेदन करैया 7 जुलाई ले करे जा सकत हे। ए योजना के तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चयनित छात्र मन ला हर महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही।

ट्यूशन फीस के पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर ही। आखिर मां प्रमुख समाचार एक घौं फेर। मन की बात कार्यक्रम मां प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जन संरक्षण के संबंध मां वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए के करीन अपील। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मां घलो सुनेगीस। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर मां शून्य ले 5 बछर तक के लयिका मन ला पोलियो के दवाई पिलाएगीस। और मौसम विभाग हा वही 3 दिन तक बस्तर संभाग मां एक दो जगह मां मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी देहे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जुहार।

0: वही पिलाई गीस। अउ मौसम विभाग हा वैया 3 दिन तक बस्तर संभाग मा एक दू जगह मा मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी देहे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जुहार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में सादरी लोकगीत घसिया लकड़ा और साथी के आवाज में।

आप सुन रहे थे लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में सादरी लोकगीत। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब आप हमारे मीडियम वेव पर आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। एफएम बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत था डी बर्मन का, फिल्म थी कटी पतंग। लीजिए सुनिए मुकेश कुमार की आवाज़ में योगेश का लिखा गीत, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म है आनंद।

आप सुन रहे थे मुकेश कुमार की आवाज में फिल्म आनंद का गीत। कार्यक्रम चितपट में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म है आह।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत FM बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है।

0: क्रिकेट विश्व कप 2026 के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ वाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ?
4: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
11: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
10: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
11: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
10: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
11: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण करने और कैच द रेन अभियान में भागीदारी की अपील की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा, अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी पोलियो की खुराक। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान

0: केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्ध पोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। मन की बात कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर सुना गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बन चुका है।
2: मन की बात का 135वां एपिसोड मुख्यमंत्री निवास में हम सभी लोगों ने सुना है। एक तो आज एक नई जानकारी मिली है कि रूट ब्रिज मतलब पेड़ों के जो जड़ होते हैं उसको संग्रह करके उसको विशेष प्रयास करके ब्रिज बनाने का काम भी देश में चल रहा है। ये सब अद्भुत चीज प्रधानमंत्री जी की मन की बात के द्वारा पूरे देशवासियों को पता चलता है तो बड़ा ही उपयोगी रहता है।
0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। आज जो बच्चे दवा पीने से छूट गए हैं उन्हें कल और परसों स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और शिशुवती माताओं के पंजीयन के लिए 15 जून से संचालित विशेष अभियान में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश ने अभियान के शुरुआती 9 दिनों में ही निर्धारित लक्ष्य का 72% पूरा कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ये अभियान आगामी 15 जुलाई तक चलेगा। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला तथा बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सभी हितग्राहियों को बधाई दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
3: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल 29 जून से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा। 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में

0: गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के बारे में जानकारी मिलेगी।
1: प्रदेश भर के जितने लोकतंत्र सेनानी हैं उनको सम्मान करने का और आपातकाल को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए थे। और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में जानकारी होगी। बहुत बड़ा अन्याय आपातकाल के माध्यम से उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार ने किया था।
0: पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की वर्चुअल बैठक हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण से न केवल कार्यकर्ताओं का बल्कि जनप्रतिनिधियों का भी डिजिटल और तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। श्री साय ने कहा कि इसके माध्यम से बूथ स्तर तक के नए और युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास और कार्यप्रणाली की सटीक जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए छठवें और सातवें वेतन आयोग से जुड़े 59 महीने के बकाया एरियर्स के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के रिट अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि दो राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति का अभाव पेंशनरों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती का आकाशवाणी द्वारा लिया गया साक्षात्कार कल 29 जून को प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। सरगुजा जिले के रामगढ़ में कल 29 जून से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोरबी में आज हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारतमाला मार्ग पर मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में 2 डोंगरी और 1 कोरबी गांव का रहने वाला था। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। वहीं सक्ती जिले के भेड़ीकोना गांव में 4-पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, वहीं 1 अन्य युवक घायल हो गया है। इस बीच बेमेतरा जिले के ग्राम राउरपुर में अचानक कच्ची दीवार के ढह जाने से 2 बहनों की मौत हो गई, वहीं 1 महिला घायल हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां घर के आंगन में बैठी थी, इसी दौरान दीवार भरभराकर गिर गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।
2: दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है और इसके साथ साथ उत्तर छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा संभाग में भी काफी अच्छा बारिश होने की संभावना है। आज से लेके आगामी 7 दिन तक भी वर्षा का गतिविधि में थोड़ा वृद्धि होने की संभावना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हल्की से लेके मध्य वर्षा होने की चांसेस है। बस्तर संभाग में आज से लेके आगामी 3 दिन तक 1-2 स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा होने की चांसेस है।
0: इस बीच आज बस्तर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की खबर है। जगदलपुर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन अब आगामी 7 जुलाई किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एमटेक, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये की फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण करने और कैच द रेन अभियान में भागीदारी की अपील की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा, अगले दो दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी पोलियो की खुराक। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: एफएम बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इस समय 7 बजे हैं। आइए आपको अवगत करा दें आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही देर में शाम 7:20 पर लगेगी ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल। कार्यक्रम में सामान्य चर्चा के विषय होंगे पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व, स्वच्छता से ही स्वास्थ्य है। साथ ही सुनेंगे किसान समाचार, सुनेंगे कुछ लोकगीत, सुनेंगे ओबी और जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी या मौसम आधारित कृषि परामर्श। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात का सरगुजिया अनुवाद। अनुवादक शिवानी गुप्ता होंगे। वाचन और संपादन होगा देवेंद्र दास सोनवानी का। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का कार्यक्रम आप सुनेंगे।

आइए अब जानते हैं दिनांक 29 जून 2026 अर्थात सोमवार को हमारे आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी कार्यक्रम वंदे मातरम के साथ। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे 6:05 पर। रामचरितमानस का गायन होगा 6:35 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में आप सुनेंगे सादरी लोकगीत तिलन साय तिग्गा और साथियों की आवाज़ में, और सुनेंगे छुन्नूलाल तिग्गा और साथियों की आवाज़ में ही सादरी लोकगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम पेश किया जाएगा 7:15 पर। कार्यक्रम परिक्रमा हम लेकर आएंगे 8:30 पर। वाचन और प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडे का होगा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रमेंद्र कुमार। कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग मृदुल वर्मा का होगा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रमेंद्र कुमार। खेती के बाद का पुनः प्रसारण किया जाएगा 1:05 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन का प्रसारण समय होगा 1:10 पर। आप सभी श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा 1:40 पर। युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम 5:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली का प्रसारण होगा 6:20 पर, जिसमें आप सुनेंगे सरगुजिया लोकगीत साधारण तास और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी कड़ी में आप सुनेंगे सादरी लोकगीत रामेश्वर क्रिकेटा और उनके साथियों की आवाज़ में, जिसमें आप सुनेंगे रिंजा गीत। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी 7:20 पर। कार्यक्रम में सामान्य चर्चा के विषय होंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता बचाना जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस पर विशेष। कार्यक्रम में आप सुनेंगे मिर्च की उन्नत खेती अमृत सरोवर योजना, जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी व मौसम आधारित कृषि परामर्श। FM बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इस वक्त 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा में, पंकज उदास की आवाज में नुसरत बदर की लिखी ये गजल।

कतिल सिफाई किसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त हुआ। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर

सुन सकते हैं। FM बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनोइया जम्मो किसान भैया बहनी मनला राम राम जय जोहार। किसान भैया बहनी हो, देखिए अब दे बरखा कर तो भाई शुरुआत हो गई है और कही कि भाई आषाढ़ घलुक अब कैले घुस जाही, लेकिन जो हिसाब से पानी गिरना चाहिए वो हिसाब से अभी ना जो खबर कि ये देख खंड वर्षा हुआ है तो ऐसा समय में हमला जरूरत है कि भाई जैसन पानी गिरी वही हिसाब से अपन खेती करे कर तैयारी ला अभी ले सोच के रखना पड़ी, तभी जाके हमन अच्छा जो है फसल उत्पादन कर पाबो। बाकी किसान भैया बहनी हो, आज गोइट करी पर्यावरण संरक्षण कर बात करी। आज देखी मन कर बात में हमन सुनत रहें, रौरे मन भी सुने हो, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कतेक सुघर गोइट ला करीन, कहिन कि भाई अभी कर समय है जो भी स्वच्छता कर गोइट करीन, कहिन कि बरन बरन कर हमर देश में गांव में होता है कई ऐसा योजना बना के काम चलता है। वही में से एक बड़ा सुघर बात कहीं कि एक प्रेरणादायक मिसाल देखे पर मिली मध्य प्रदेश कर राजगढ़ जिले कर ब्यावरा में, वहाँ कर जो महिला मन है देखी भाई प्लास्टिक कर कचरा ला हटाए कर संकल्प लेन और उमन काकरो इंतजार नहीं करीन। भाई देखी गांव घर में कचरा है, चाहे आसपास में गंदगी है, चाहे जो भी हमारे सार्वजनिक जगह में कही ली, चाहे जो भी हमारे आसपास स्कूल है, चाहे जो भी मतलब सार्वजनिक जगह कर बात करी, वैसा जगह ला हमन ला साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। वही बात ला कहीं कि भाई किन तरह से देखी भाई वो जो मध्य प्रदेश कर राजगढ़ जिला कर जो ब्यावरा गाँव कर जो महिला मन है उमन एक कदम उठाइन और काकरो इंतजार नहीं करें, बल्कि खुद ओमन आगे बढ़ के वो गांव ला वो शहर ला जो प्लास्टिक कचरा रहीस ओला जो खाली बोतल मन ला ये इकट्ठा करना शुरू कर दें और एकत्रित करके ओमन ला एक तरह से ओला एक नवाचार करें, इको ब्रिक्स कर माध्यम से सार्वजनिक स्थान कर सौंदर्यीकरण करें। एकर पहल से एक ही नहीं कि जो हमार कई ऐसे जो प्लास्टिक मन रहीस जो हमार कहत रहन कि और ख़त्म नहीं हुए वोकर पुनर्चक्रण होता है, जो प्लास्टिक कभी प्रदूषण कर कारण बनत रहीस वहर आज उस गांव कर वो शहर कर सुंदरता ला और स्वच्छता ला बढ़ावाता है। तो निश्चित रूप से पर्यावरण कर जब हमन गोइट करथन तो बात देखी भाई हमार छोटे छोटे बात से होते हमार जो पानी हुई शुद्ध होना चाहिए, हमार जो हवा है वो हर स्वच्छ होना चाहिए, जो हमार जंगल है जो पहाड़ है नदी है जो नरवा है वो एक तरह से मिल के हमार पर्यावरण ला एक जैव विविधता का रूप देते। और देखिए ये धरती दाई तो भैया हमार सबसे बड़ा प्रकृति द्वारा एक उपहार है, एक धरोहर कर रूप में है, लेकिन आज देखा था कि दिनों दिन जंगल कर कटाई होता है, प्रदूषण बढ़त जाता है और प्लास्टिक कर कचरा मन बढ़ते जाता है, तो हमारा जरूरत है इला चिंता करना बहुत जरूरी है और एक गंभीर चुनौती है हमारे संग कि हमन आज शहर तो भाई प्रदूषण देखे पर मिलते हैं गांव में घर देखी बहुत ज़्यादा बढ़त जाता है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनी ही कि हमारे पर्यावरण ला संतुलित बनाई और जो अंधाधुंध दोहन होता है जो प्रकृति के साथ हमन खिलवाड़ करते हैं पेड़ लगाते हैं या ये कही कि जो पानी का क्षरण होता है हमार देखिए आज मन कर बात में जल संरक्षण कर गोइट घलू करें बड़ा सुगर कहें कि हमन ला देखी भाई कैच द रेन कर नाम एकर माध्यम से हमन ला पानी कर बचत भी करना है, आए वाला जो पानी गिर ही हमन ला जोगाए के रखना है तभी जाके आगे उहर हमार काम आई। तो छोटा छोटा बात है चाहे जल संरक्षण कर बात कह ली चाहे स्वच्छता कर बात कह ली और स्वच्छता से ही स्वास्थ्य जो है हमार जोड़ी से अगर देखिए हमन साफ सफाई नहीं रह तो निश्चित रूप से हमार बर बीमारी पड़ब। गांव गवई कर जैसे हैंडपम्प आस पास में जाता हूँ तो देखता हूँ कि ढेरे कचरा मन ढेरे जो है गंदगी फैले रहे तो कोशिश करी कि भाई पानी तो भरा थी वही पानी ले पिए थी लेकिन वो आसपास कर जो गंदगी है वो आसपास कर जो भाई दिखत हन कचरा है वो ला भाई मिलजुल के थोड़ा सार्वजनिक रूप से आस पारा मोहल्ला कर मिल के साफ कर दी अगर वही ला साफ नहीं कर दे तो हमार जो गाँव कर जो हैंडपम्प है वह सुगर हो जाए। कुआँ है वही कस कुआँ कर पानी ला भी हमन अभी बढ़िया जो है साफ सफाई रखी तो पिए कर पानी का एक मतलब शुद्ध रहना चाहिए अभी खास करके बरखा में और ऐसे में पानी अगर थोड़ा सा भी इते उते होता है तो ये मान के चलिए कि भाई हमन बीमारी ला यदि बुलावा देता। तो किसान भैया बहनी हो पर्यावरण कर जो रक्षा है यह कोई एक जनक जिम्मेदारी नहीं है, कोई संस्था कर जिम्मेदारी नहीं है, ना कोई एक तरह से एक हमार सामाजिक दायित्व बनते। हर नागरिक चाहे हर मनसे अपन दैनिक जीवन में छोटा छोटा बदलाव लाने तो अपन सकारात्मक परिवर्तन ला संभव हो सकता है। जैसे अभी बरखा आवता है कैल से वही आषाढ़ घुस जाए अब जैसे बरखा

तो ये ध्यान रखिए कि हमन ला पौध रोपण के दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। एक पेड़ माँ के नाम कतेक सुघर देखी जो योजना चलत है, लेकिन हमन ओला हमन ला ध्यान रखना है कि हमन भी अभी वृक्षारोपण करके और हमन पर्यावरण में अपन एक योगदान दे सकत है। जो पानी हुई बिजली के बचत करना, ये छोटा छोटा बात है जिला हमन अगर ध्यान दे तो ये मान के चलिए कि हमारे पर्यावरण हर संतुलित होगी। प्लास्टिक कर थैली के जगह पर जो हमन कही कि जूट कर बैग कर प्रयोग करी या जूट कर झोला आयल ओकर उपयोग कर सकते हैं, तो हमन ला कचरा नहीं करना है, ये बात कर ध्यान रखना है। देखिए कचरा रहे ना तो मन मस्तिष्क मन घलुक देखिए एकदम कहीं काम भूता नहीं लगे। तो गांव घर में अगर पहले घरे में कचरा अगर बहुत ज़्यादा है तो देखियो कैसे मन हर कहीं करे कर काम नहीं करे, एकदम अलगे टाइप के लगे। तो हमारा ध्यान रखना है कि भाई हमार साफ सफाई हुई, हमार आंगन हुई, हमार बाहर हुई, हमार भीतर हुई, संगे संगे हमार आस पास जो हमार गांव है वो हर भी स्वच्छ रहे। तो ये पर्यावरण कर संरक्षण कर प्रति जागरूकता हमार जितना बढ़ी किसान भैया बहनी हुई उतने ही हमन आय वाला पीढ़ी मनला उतने ही सुरक्षित और अच्छा समाज देबो। भाई देखिए बरन बरन कर हमन देखथन कि स्कूल में होइस चाहे कॉलेज में होइस, बड़े बड़े स्वयंसेवी संस्था मना है, इवन अपन प्रयास तो करते चाहें, लेकिन ये प्रयास तब सार्थक होही जब गांव सर लैका सियान जवान सब मिल करके हमन ला संकल्प लेना पड़ी कि प्रकृति कर संरक्षण अपन योगदान देब और अपन आस पास कर वातावरण ला स्वच्छ बनाब और ये कही कि हरा भरा बनाब और सुरक्षित बनाब। सुरता रखी भाई, स्वस्थ पर्यावरण है और स्वस्थ जीवन है, यही हमर सबले बड़ा पूंजी है। कथे ना कि सबसे बड़ा धन अगर रौरे करा है तो संतोष धन और स्वस्थ है। रौरे अगर स्वस्थ है, रौरे एकदम बढ़िया मन लगा के काम बूता ला करत है, रौरे कर जो भी खेती किसानी कर काम है, तो ये मानी कि वही हर तुम रौरे कर सबसे बड़ा आधार है, वही रौरे कर पूंजी है। तो हमन ला ध्यान रखना है कि एकर बर सबसे पहली बात स्वच्छता ला ध्यान रखना है और पर्यावरण संरक्षण कर एक जो अहम हिस्सा है वो आसपास कर जो हमार गांव गंवई कर स्वच्छता कर जब बात करते हैं तो सब ला हमन ला ध्यान रखते हुए स्वच्छता से ही स्वस्थ रह सकथन, ये बात कर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और किसान भैया बहनी हो देखी जहाँ वेट करती पर्यावरण संरक्षण कर बात चाहे स्वच्छता कर बात चाहे जो भी हमर जल संरक्षण कर गोट के लिए, ये सब जुड़ी सा है हमर ये धरती कर जो संतुलन बने कर, ये जो स्वच्छता कर जो हमन गोट करथन तो स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता ही स्वस्थ, ये कही कि स्वास्थ्य कर पहला कदम हो। अगर हमन स्वस्थ जीवन ला जियत हन तो एक बार सबसे पहली बात है कि हमार घर हमार आसपास कर वातावरण हमार जो व्यक्तिगत देखी आदत है ओला सुधार करना बहुत जरूरी है। ये कही कि देखी हमन ला रोज दिन स्नान करना चाहिए तो जानते ही भोजन से पहले बढ़िया लेकिन भाई हाथ मन ला धोए ली, सोच कर बाद साबुन से हाथ जरूर धोई, पानी तो एकदम स्वच्छ रहे ये बात कर ध्यान रखी, घर कर आसपास कर सफाई रखी, छोटे छोटे जो कचरा मना है ओला एक जगह बढ़िया लेकिन जो है डाल के ओला जो है कहीं गड्ढा में गाड़ दी। देखी जब गंदगी होते और मच्छर पनप थे, अभी आए वाला समय देखी पानी बूंदी करा है और बरखा में जैसे ढेरे पानी जम जाए तो मच्छर हो जाए मक्खी होल तो बीमारी कर गोट करी तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये सब बीमारी फैले कर शंका हो जाते। तो हमार गांव हर स्वच्छ रहे, हमार शहर हर स्वच्छ रहे, एक बार हमारा जिम्मेदारी तो लेना पड़ी, अपन घर कर आसपास ला पानी जमा हुए झन दे, स्वच्छ वातावरण बनाए के रखी। हमार देखिए स्वच्छता केवल हमार एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है किसान भैया बहनी हो, हमार यह सामाजिक दायित्व हवे। और जब हमार हर मनसे अपन घर अपन गली अपन पारा अपन मोहल्ला और सार्वजनिक स्थान में साफ सफाई करके संकल्प लही तब जाके हमार पूरा गांव हर एक तरह से स्वस्थ होही, और जब गांव स्वस्थ होही तो हमार समाज स्वस्थ होही और समाज स्वस्थ होही तो सुंदर होही। तो निश्चित रूप से ये कही कि हमन जब बात करती हमार पर्यावरण कर बात करती हमार स्वास्थ्य कर तो ये विषय में हमन ला अपन व्यक्तिगत रूप से हमन ला ये जिम्मेदारी ला निभाना पड़ी, चाहे वो घर कर गोट हो चाहे पारा कर हो चाहे मोहल्ला कर, तब पूरा समाज हमार जुड़ ही और स्वस्थ और सुंदर बनी। तो मैं तो यही कहूँ कि हमन मिलजुल के देखिए एक जनक काम नहीं हुए, मिलजुल के स्वच्छता से अपन दिनचर्या करला हिस्सा में बनाई और एक स्वस्थ और स्वच्छ और खुशहाल गाँव कर निर्माण में रौरे सबको योगदान दे, स्वच्छता ला अपनाई बीमारी ला भगाई स्वस्थ रही और खुशहाल जीवन पाई। देखी भाई ये तो होगी गोट संदेश कर, अब बाकी मैं कहत रहन कि भाई जब गीत गोविंद भी हो जाए तो
तो मन हर देखे।

कि एगोट हरियर हो जाएल कथे नही। तो एगोट बड़ा सुघर लोकगीत लाने हूँ रौरे मन बर, और उम्मीद करत हूँ रौरे मन ला अच्छा लागे। केदार यादव और उनकर गाल गीत हवे, तो लगी ये गीत ला सुनत ही।

हाँ तो बड़ा जुर्मी है गांव के गोरी, बड़ा सुघर गीत जिला गाय रहीन हमर छत्तीसगढ़ के बहुत सुघर गायक केदार यादव। रौरे मनला पसंद आई सो ही। किसान भैया बहनी हो, देखिए अगर हमन अभी ग्वेट करी भाई खरीफ सीजन कर, और खरीफ समय में हमनला का का खेती कर तैयारी करना है, कैसे करना है, तो ये बात कर ध्यान रखना जरूरी है कि समय अनुसार हमनला खेती करना है। पानी कैसे गिरता है भाई, पानी अगर कैसे गिरता है वो हिसाब से खेत कर तैयारी हमनला करना पड़ी, वो हिसाब से बीज कर व्यवस्था करना पड़ी, खाद कर व्यवस्था करना पड़ी। तो खास करके खरीफ सीजन कर बुआई भाई देखिए अब शुरुआत होए वाला है, और हमारे जो कृषि विशेषज्ञ मन कहते हैं कि भाई बरखा कर जो स्थिति है ओला देख के हमार किसान भैया बहनी मन जो अनुशंसित किस्म है जो कृषि विज्ञान केंद्र से जारी हुई है उनकर बुआई करें। ध्यान रखें किसान भैया बहनी हो, माने बीज जो है रौरे मन करना प्रमाणित बीज रहे और प्रमाणित बीज कर ही उपयोग करी, काबर की खेती कर सबसे पहल आधार हवे बीज और पहल सीढ़ी घल बीज हवे, और बीज अगर बढ़िया पोट है, बीज अगर प्रमाणित है तो उकर पहल आधार हमार अच्छा हुए और पौधा भी अच्छा होते। और मौसम विभाग कर अनुसार देखी भाई ये साल जो मानसून है उकर शुरुआत कई तरह से सामान्य रूप से कमजोर भी हो सकता है, लेकिन ऐसन में हमार किसान भैया बहनी मन खेत में नमी संरक्षण जल संचयन और मौसम आधारित जो कृषि सलाह है ओला पालन करना बहुत जरूरी है। जो भी क्षेत्र में भाई अगर अच्छा बरखा होता है वहाँ धान होइस सोयाबीन होइस मक्का अरहर उड़द मूंग जैसे खरीफ फसल कर बुआई रौरे मन कर सकत ही, वहीं अगर कम बरखा होता है तो वो हिसाब से थोड़ा सा भाई यदि छोटी जोह ले कि पानी बढ़िया गिरे तब जाके हमन खेती किसानी ला करब। कृषि वैज्ञानिक मन देखी हमार किसान भैया बहनी मन ला भी अपील करीना है कि बुआई कर बाद खेत कर नियमित जो है देख रेख ओकर निरीक्षण करी, जो भी कहीं कीट लागत है कहीं रोग लागत है ओकर शुरुआती लक्षण दिखाई देता है तो ऐसन में जो है कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर सलाह ले, और नहीं तो रौरे कर गांव में देखिए कृषि विस्तार अधिकारी मन है ओकर से भी रौरे मन सलाह ले सकत है। और ख़ास करके जो किसान भैया बहनी पशुपालन करते हैं वह मनला भी ध्यान रखना है, आप आज कर समय में देखी भाई खेती किसानी कर संग पशुपालन भी करना है और अतिरिक्त आय तबे हमला भेटा ही। किसान भैया बहनी हो डेयरी कर बात हुई चाहे पशुपालन कर बात हुई चाहे मछली पालन कर, ये सब भी अभी बड़ा अच्छा अवसर है कि इला हमन करके अच्छा जो है मुनाफा कमाए सकत ही और अतिरिक्त आमदनी कमाए सकत ही। तो मैं तो यही कहूँ कि अभी कर जो समय चलता है इमें हमला बड़ा ध्यान से खरीफ फसल कर तैयारी करना है, जो व्यवस्था है जैसे पानी गिरता है जेकर जग भाई पानी कर व्यवस्था है वो तो अपन हिसाब से बढ़िया मन लगा खेती करता है, लेकिन जेकर जग भाई वो ऊपर अंग कर पानी कर भरोसा है ओला चटिक भाई हमला सोच समझ के खेती किसानी ला करना है। बाकी मैं कहते रहें हमार जो है एक हमार किसान के क्रम में श्रीमती दिलबसिया पावले जो ग्राम जमगला कर हैं टिकरा पारा कर रहे वाला हैं और बड़ा सुघर गोएट बात करीने हमार बीनू भैया जय रहीन और उनकर से गोएट बात करीने हैं खेती किसानी कर गोएट और अभी कर समय में क्या का तैयारी करें और कैसे, तो ये ला लगी सुनत है

जम सुनवैया किसान भैया बहनी मन के राम राम। देखी मैं आज ना कहब तो बुलत बुलत एदे जमगला पहुँच गए और कहब तो जमगला में टिकरा पारा। अब यहाँ एगो काकी भेटाइन है और नगद एदे खेती पाती करत हैं और संग संग ढेरे कर मइनसे मन हैं काम बूता करत हैं इनकर संग। तो मोके भई लगी

0: कि देखिए दे चटी पुरान है और नगद दिन ले करत हो ही तो काबर न गोट बात करल जाए और राहुल मन से भी बातचीत सुनवाल जाए। तो सबले पहले तो नाम ला पूछा थोड़ा और नाम ला बताते हैं।
1: दिलबसिया पावले
0: और गांव राउर
1: जमगला टिकरा पारा।
0: हो तो देखिए अजय का खेती पाती करत ही
1: तो अभी हमार खेती का है।
0: हाँ
1: अब खेती करे के दिन जैसे जोताई कोड़ाई खेत खार के है।
0: हाँ
1: खेत जैसे जोताही तेकर हम एकर बार अंदाज वो बिहन तो आघू का रहे हम बिहन गोतन ला धरे सहते रहन। आज काल कही है तब बिहन नहीं सहतन। अब का करबो जाबो दुकान में चाहे सोसाइटी में जाबो तेकर हम का कहो कि हम लोग बिहन के जरूरत है। तो वो का कही का धान तो भाई धान ला हम नहीं बतान खेत ला बता देथन कि मोर खेत एकर कसे ऐसे है ऐसे है। तो तीन प्रकार के खेत है तो तीनों प्रकार के वो जगह ला बताबो तेकर मन बिना देखे बिना समझे वो हमन ला बिहान निकाल के दे दही। और आजकल तो वो धान के नाव ला हम जानबो नहीं करन।
0: हाँ नहीं
1: हाँ
0: हाइब्रिड मध है।
1: हाइब्रिड के दही यह रहे बहरा के है और यह तो गादर चावर के है यह तो रोड के है ऐसे कह के वो तीन तुक के धान ओला दे दही ना। आ बोला हम ओला पूछ ले बोता कितना दिन में जगाना है तो ले दे के 20 से 25 तक जगाना है। वो हिसाब से हम दिन ला गन गन के रहते ओकर बाद हम खेती करथन। ओकर बार फिर का करही कि ओमन खातू भी दे दही बीज भी दे दही। अगर रोग लगत है धान में हमर तो ओला जाए के कबो और धान ला बीन के ले जबो कि यही धान यही रोग है देखा ओकर भी एकदम सोच समझ के मन दवा दे देते भाई।
0: हाँ नहीं
1: हाँ फिर ओला ओला डाल देबो ओमे भी अच्छा हो जाही। अगर कहीं कुछ भी बीमारी हो ओकर बारे में इलाज के लिए हमला वही मन समझ बताते हैं। और पहले के खेती और अब के खेती में बहुत के फर्क है एक खुशी ओ है। पहले का रही स हाँ ओ समय के बात है धान ला बुने बर रहे तो हम घर में रखे रहन बिहन और धान नांगर से जोताई करन। नांगर से जोताई करन ले दे के अब बोला एक हफ्ता जोतते कोड़ते ओकर सुगर ले ढेला टुकू करते ओकर बाद में हम ओला बुन देते धुरिया। अब वो धुरिया बुनाई कहाँ चले गई। अब एक कट्ठा वाला का करबो चिखला हो ही हम ओला रोपा जगा देते। अच्छा रोपा जगा थन ते का हो ही खातू बीज वो हिसाब से देबो तो बनी। अगर खातू बीज नहीं देहन तो नहीं होए।
0: अच्छा एक बात बताई मुके
1: हाँ
0: कि पहले कर हर बढ़िया रहीस कि अजय कर खेती पाती हर बढ़िया है।
1: एक में उपज ला देखे ले अभी के खेती अच्छा है।
0: हाँ
1: पहले रही तले दे के अभी के अभी जैसे चार ही से ना तो चार ही में एक ही पहले होत रही।
0: अच्छा
1: ले दे के होत रही।
0: हाँ
1: अब तो कैदा अच्छा होती है।
0: बाकी स्वाद तो पहले कर हर रही बढ़िया।
1: स्वाद तो समय के अब ले दे के कहूँ नहीं तो साग ले सब्जी ले चावल ले सब में फर्क है बेटा।
0: राउर उम्र कितना हो ही तो
1: मो 60 के है।
0: 60 के है ना।
1: हाँ, हाँ।
0: देखी तब वो ये देखी आज कर खेती ला भी जाना थी और पहले कर खेती ला भी जाना थी।
1: हाँ
0: बाकी ये दे गर्मी में काका लगा रहे हैं राउर।
1: तो अभी गर्मी में का हुई से दे भिंडी जगाए हन।
0: हाँ।
1: लौकी जगाए हन।
0: हाँ।
1: करेला है टमाटर है बरबटी है।
0: हाँ।
1: वो अच्छा फरत फूलत है।
0: हाँ ना।
1: हाँ।
0: तो एला घरे खाए बर लगाया है कि बाजारे पहुंचा था।
1: ये कतेक ला घरे खाई हा बेच दे थन भाई बाजारे।
0: हाँ।
1: बाजारे
0: तो कौन जाल बाजारे लेके
1: एक ले कोचिया आ जाती है गुड़ बात।
0: हाँ।
1: और बाँची से
0: हाँ।
1: तो हम खुद चल देते ना बेच खोज के आ जाते।
0: कौन कौन बाजार जाता
1: हमारे जा कौन बाजार है एक ठन दर्री बाजार है।
0: हाँ।
1: एतवार के।
0: हाँ।
1: बीफे के है देवघर बाजार।
0: हाँ।
1: मंगल के है गुमगरा बाजार।
0: हाँ।
1: और पुटपुटरा में है बाजार।
0: हाँ।
1: तो सब बाजार ले नहीं कर सक।
0: हाँ बाकी ट्रक टुरुक घरे ले भी ले जात हो।
1: एक से काथे एक ले कम नहीं
0: है ना।
1: तेकर मन ले जाही बेच खोज के और पैसा दे देते अपने मन के मंजूरी ले लेते।
0: अच्छा एक बात और से पूछू मैं।
1: हाँ।
0: जैसे राउर के नवा लड़का मन सुनत हो अजय कर जे मन ये नहीं सोचते कि का खेती पाती ला करी यार बढ़िया काम बूता नहीं है करके तो तेमन ला चटिक राउर का कहब अपन तरफ से कि करना चाहिए मन ला खेती पाती और करना चाहिए तो का कस करके लाभ ज्यादा कमा सकते हैं।
1: अच्छा आजकल का है ना नौकरी ला ढेर खोजते हैं।
0: हाँ
1: लेकिन

0: बात तो कतना कर देखे, पढ़ा लिखा लड़का लेकिन नौकरी नहीं लगी से बेटा।
1: हाँ
0: तो नौकरी नहीं लगी तो मैं कहा कहे कि ये हमारे सबले बड़े नौकरी है जम धरती माता हरे।
1: हवे
0: तेकर बोर खनवाए, बोर खनवाए के बाद आज साग सब्जी चलत है तब मोर वह नौकरी कस लागत है।
1: हाँ
0: हफ्ता में पैसा पाए जाता नहीं तो रोजो पैसा पाए जाता।
1: हाँ तो ये गर्मी कर बात होगी इस बाकी ये दे बरखा कर समय में का लगा थी।
0: बरखा के समय में मोर खेत है
1: हाँ
0: तो खेत ला रोपा जगाए दहूँ
1: हाँ
0: चाहे मैं चोपी बुन दहूँ।
1: हाँ
0: धुरिया तो आजकल नहीं बुनन, पहले बुनत रहे ना, आजकल तो रोपे जगाए बर पड़ते।
1: है ना। तो रोपा तो देखी घर घर में नहीं हो पार्थ हो ही तो।
0: का होते जी हाँ 200 देहे बर है ना,
1: हाँ
0: तीन 400 ले बर्थन गा
1: हाँ
0: उस समय में जब काम पर जाही तो जी हाँ 200 बनी रही तो मैं 400 देहूँ कह के
1: हाँ
0: लगाथन और लगाथन भाई अपन खेती ले हम नियल ढेरन।
1: बाकी ओकर बाद भी राउर दे लाभ कमा लेती।
0: ये तब 70 रुपये में लगाबो तो 1 नंबर के धान होते देखनी पड़ जाते।
1: तो राउर लड़का मन कर तो शादी हुई सही नाती
0: तो
1: पोता भी वही।
0: नाती पोता है
1: हाँ
0: आओ बेटा मन के सब शादी हो गई से।
1: हाँ नहीं
0: हाँ
1: तो तोर नातीच पोता मन कर बारे में पूछूं पढ़त आहा की
0: पढ़त है लेकिन पढ़ के कोढ़िया हो गई,
1: काम बुता नहीं करे है
0: नहीं करे बर हो सीध साध कथे नौकरी करवा नौकरी नहीं मिले
1: हाँ ना। तो बाकी उमन ला लाना तो पढ़ी रहा और खेती पाती तरफ
0: लेकिन देखा थे
1: है नहीं
0: वो नहीं हो करके करते हैं बनिहार करुआ के करते हैं लेकिन करते हैं।
1: है ना।
0: हाँ
1: सिंचाई कर का सुविधा है राउर जाए
0: ये दे बोर है।
1: बोर है
0: हाँ
1: और नरवा में नहीं है राउर तरफ
0: नरवा है लेकिन नरवा सूख जाते।
1: सूख जाते
0: हाँ
1: तो नरवा तरफ है खेत राउर।
0: हाँ नरवा में है, नरवा के ऊपर पखार में है तेकर घर लाइन में है।
1: हाँ तो सब्जी भाजी ला बाजारे पहुंचा था धान ला
0: धान ला सोसाइटी में देथन भाई।
1: सोसाइटी में देते।
0: हाँ
1: तो देखिए एक बात तो पूंजी कर हो जाए तो राउर जग पूंजी रहल की सोसाइटी ले ही लान थी।
0: तो सोसाइटी ले हम एक एक करके लान बो आओ सोसाइटी वाला हमारे पूर्ति कर देते
1: हाँ
0: आ ऊपर हमारे पैसों बांट जाते।
1: है ना।
0: हाँ
1: तो देखिए दे घर परिवार लग बढ़िया चला थी वही पैसा लेके आने काम बुता भी
0: एक नंबर के मैं पेंटिंगो करती हूँ।
1: पेंटिंग करती
0: हाँ
1: का बना थी।
0: मैं साड़ी बनाऊँ, दुपट्टा बनाऊँ, बेडशीट बनाऊँ पेंटिंग के नाम से,
1: हाँ
0: एक से एक जितना भी ये कर ला वो पेंटिंग के नाम का है गोदना पेंटिंग।
1: हाँ
0: ओहू कथी ले मोला फायदा मिल जाही, मैं घर बैठ के कमाहूँ
1: हाँ
0: और फिर प्रदर्शनी जाऊँ तो आए जाए के टीए डी ए सब कुछ मिल जाते
1: हाँ
0: और मोर कमाई के कमाई हो जाती।
1: देखी राउर कर उम्र इतना है ओकर बाद भी राउर आज कल कर जो पढ़ल लिखल लड़का है नहीं ओमन ले आगू ही काबर की राउर दे कढ़ाई मन ला कर थी पेंटिंग कर थी और नहीं जाने हमरे देखी नहीं जाना थी नहीं तेहू जगह ला राउर जाना थी और जा थी और देखी टीए डीए घल हो पा थी कह थी नगद कमा थी।
0: एक बात बताऊं
1: हाँ
0: आज पेंटिंग के कारण ना
1: हाँ
0: तो हर चारों खूंट देश ल में देख ले बिना पैसा के
1: है नहीं।
0: एहर का है मोला नौकरी, एक नौकरी मिल गई। अनपढ़ तो हूँ
1: हाँ
0: लेकिन एक कला के नाम से मोला नौकरी के जरूरत नहीं। मोला कोई देखते ना तो अचंभा मांग जाते कि बाप भाई एकर उम्र देखा
1: हाँ
0: और एकर हाथ कैसे चला थे,
1: हाँ
0: कोई तो चक खाए जाते मोला देख के। लेकिन कम से कम मोला सराहना कर देते तो वही में बड़ा उमंग आ जाते भाई मोला।
1: हाँ तो देखिए ये दे सुनुया भैया बहनी हो देखिए कहता है कि एको आखर नहीं पढ़ी ने बाकी इतना सुगर काम की ये दे देश में कहता है कि बिना पैसा कर जम तरफ घूमेन आ वो घूमई हर कहब तो नौकरी बरोबर है तो ये हर कहब नहीं तो ये दे सीखे कर काम है आजकल कर हमरे लड़का मन नहीं ये दे काम बूता तरफ नहीं जाई और अपन संस्कृति ला भुलाए जाती अपन घर कर काम बूता ला भुलाए जाती बाकी गोट बात करें तो मौके लगी कि देखी घर कर काम बूता ला भी करके हमन अपन नाम ला बहुत सुघर बना सकती। राउर हमन से गोट बात करें राउर के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।

0: बुवाई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ, तो देखिए, ये तो रहे संदेश। और पहले हमन देखी कतेक सुघर गोएट सुनेन श्रीमती दिलबसिया पावले और ग्राम जमगला कर रहीन और बड़ा सुघर एदे गोएट बात करिन बिनु भैया और देखत रहिन कि जब गोएट करत रहिन ते मीठ बोली में जो है वो गुठियावत रहिन सरगुजिया में, बड़ा सुघर लागत रहिस। और खेती किसानी ला कतेक मतलब एकदम ध्यान से सहज के वो करत हैं और इजकार लड़का मन ला गुठियावत हैं कि भाई खेती किसानी ले जो है दूर भागत हैं, पढ़ाई लिखाई के गलू कोई मन कथें कि का करबो। ये बात ला बड़ा दुख से कहीं, ये बात जरूरी भी है कि हमला अब आजकल कर समय में जो पढ़ल लिखल जो किसान युवा मना है जो खेती किसानी कति जो है ध्यान दें और खेती किसानी हमार पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती करी और फसल उत्पादन करके हमार आय में वृद्धि कर सकत ही। तो हमन ये ध्यान रखना है कि जो हमार आजकल पढ़ल लिखल छुआ मना है लड़का मना है उमन ला अभी से हमन जो है खेती किसानी तरफ जो एक दिशा दे सकत है और खेती किसानी करे बर मतलब प्रेरित करी। बाकी मैं कहते रहन कि भाई देखी गोट बात कर संग संग में गोट आओ गीत रौरे मनला सुनाना चाहत हूँ और बड़ा सुघर गीत है मोला तो बड़ा सुघर लागल रौरे मनला भी अच्छा लागी। इला गई ना है शिव दयाल पटपरिया और प्राकृतिक गीत हवे तो ये गीत लगी सुनत है।

हाउ तो देखी बड़ सुघर गीत रहीस, मन तो करत रहीस कि आओ सुनी, बाकी घड़ी कर कंटा घर कहता है कि भाई देखी विदा लेहल जाए। लेकिन हमें बता दूँ, जाते जवाती मंडी भाव राम तेल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 5,655 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो कर गोट करी तो 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, धान 2,185 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ 2,428 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम कर जानकारी कर गोट, आज जो है न्यूनतम 25.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34.2 डिग्री सेल्सियस रही, और कल जो है संभावित जो तापमान रही 25.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो है 34.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगी इस मौसम कर जानकारी और मंडी भाव। बाकी मैं कहते रहें देखी भाई, अभी कर समय हर ऐसा है ना कि जैसे ही पानी गिरीस और पानी गिरीस तो हमार खेत कर तैयारी करना, और संगे संगे ये समय हर काम ढेरे रहे, जिला भाई बादाम लगाना है, मूंगफली लगाना है, ओकर तीहा करना, धान लगाना है तो धान बीज खोजना तो बढ़िया, लेकिन खोज के अभी ले देखी पहल सीढ़ी होते बीज, कोई भी अगर बीज हर पोर्ट है नहीं तो अच्छा होगी। तो ये बात कर ध्यान रखी कि बढ़िया पोर्ट बीज रहे और खेती किसानी लमन लगा के करी और फसल उत्पादन ला करी। बाकी देखी घड़ी कंटा कहता है कि चौपाल ले विदा लिहल जाए, मोला दा विदा, राम राम, जय जोहार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन की बात का सरगुजिया अनुवाद। अनुवादक हैं शिवानी गुप्ता, वाचन और संपादन द्विवेद दास सोनवानी का है।

मोर दुलरुआ देशवासी मन जोहार। मन की बात में एक बार फिर राउर जम झन से जुड़ के मोके बहुत खुशी हुआ थे। 2026 कर आधा साल बीते बर है। ये 6 महीना में हमन मन की बात में देशवासी मन कर ढेरेच कन उपलब्धि मन कर चर्चा करे हन। जून में भी देश हर कुछ ऐसा उपलब्धि हासिल करी से जो हर देशवासी ल गर्व से भर देहल। ये सफलता देश कर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ल है। हाल ही में मुके कोलकाता में नौसेना से जुड़ल एक कार्यक्रम में शामिल होकर मौका मिलिस। वहाँ INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रेला भारतीय नौसेना कर बेड़ा में शामिल करल गईस। ये जहाज मन कर डिजाइन और निर्माण तक जम स्वदेशी है। संगी हो, जून कर महीना में ही विमानन क्षेत्र में घलो देश हर एक बड़का सफलता पाईस। C-295 ये विमान भारत में बनल है और C-295 विमान हर अपन पहला उड़ान पूरा करिस है और ऐसन 40 विमान भारत में ही बनाल जात है। एकर से MSME और हवाई अंतरिक्ष क्षेत्र ला नवा ताकत मिलत है, रोजगार कर अवसर बढ़त है और आत्मनिर्भर भारत कर संकल्प घलो मजबूत होवत है। यही महीना DRDO हर स्वदेशी लंबा दूरी कर जमीन में मार करे वाला क्रूज मिसाइल कर घलो सफल परीक्षण करिस है। इला DRDO कर प्रयोगशाला मन और भारतीय औद्योगिक भागीदारी मन मिल करके बनाइन है। यानी आज समुन्दर से लेकर आकाश तक हमर भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत है। संगी हो, जून में एक और आयोजन होइस जे में पूरा दुनिया भारत कर प्रयास मन से जुड़ीस और ये कार्यक्रम रहीस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये धार दुनिया कर 2500 से अधिक स्थान मन में योग कर कई ठे कार्यक्रम होइस। हमर देश में करोड़ों लोग मन स्थान स्थान पर योग कार्यक्रम में भाग लेन। ये महीना में अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप कर भी चर्चा हुईस। इमें भारत हर कुल 114 पदक जीतीस और इमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत ये चैंपियनशिप कर पदक तालिका में पहला स्थान पर रहीस। मैं जम खिलाड़ी मन ला बहुत बहुत बधाई देहत हूँ। संगी हो, कोई भी देश कर आत्मा उनकर लोग होते हैं और जब वो देश कर लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी ताकत उनके अपन लक्ष्य से डिगाए नहीं पायल। देश निर्माण में जनभागीदारी कर ये ताकत भारत कर बहुत बड़ा पूंजी है और ये जनभागीदारी कर हमन बार बार अनुभव करत हन। संगी हो, पश्चिम एशिया में बनल युद्ध कर स्थिति ला देखते हुए मैं देशवासी मन से कुछ निवेदन करे रहन। मैं कहे रहन कि जहाँ तक संभव हो कुछ समय पर सोना खरीदे से बची। लोग मन से कह रहन कि विदेश में छुट्टी मनाए से बची। मैं लोग मन से कार साझा यात्रा ला भी बढ़ावा देकर अपील करे रहन। मैं किसान मन से रसायन मुक्त खेती पर, खेत बचाए पर और प्राकृतिक खाद कर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे कर निवेदन करे रहन। संगी हो, मैं देश कर हर नागरिक कर आभारी हूँ कि मोर अपील करना सिर्फ उमन समर्थन करिन बल्कि हर तरफ से उमे अपन सहयोग करत हैं। मोके कई परिवार मन संदेश भेज कर अपन अनुभव साझा करिन है। कितना ही परिवार मन तय करिन है कि घर के शादी में ये धैर सोना नहीं खरीदब, जरूरत पड़ी तो पुराना सोना ला फिर से नवा गहना बनाए लेब। कितना ही लोग मन सोशल मीडिया में भी ये लिखिन कि कैसे उमन ये धैर विदेश यात्रा ला टैल देहिन। संगी हो, कार साझा यात्रा ला लेकर भी लोग मन कई ठे अनुभव ला साझा करिन है। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपन अपन गाड़ी से जात रहिन वो अब संघे जाए लगिन हैं। लोग अब हर संभव बस और मेट्रो कर उपयोग करत हैं। एकर से पेट्रोल और डीजल कर बचत होत है। यही कस देश कर अलग अलग हिस्सा में प्राकृतिक खाद कर खपत बढ़े कर भी खबर आवत है। संगी हो, मुके ये बात कर खुशी है, ये वैश्विक संकट कर हमन भारतीय मन मिलकर मुकाबला करत हन। मुके विश्वास है जन भागीदारी कर यही शक्ति हमन ला मजबूती दही और सफल बनाई। मोर दुलरुआ देश।

देशवासी मन, हमर देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होए के संगे ही पूरा समाज कर भी उत्सव होल। हर परिवार चाहेल कि ओकर खुशी दूसर कर संगे भी साझा हो। लोग मेहमान मनला भेंट भी देते। संगी हो, महाराष्ट्र कर नांदेड़ में एक परिवार हर अपन खुशी बांटे पर एगो ऐसन काम करिस है जो चर्चा कर विषय बन गई से। यहाँ नांदेड़ कर बहादुरपुरा गांव में पेठकर परिवार रहल। ये परिवार हर सोचिस कि अगर खुशी बांटे ही है तो ऐसन चीज देहल जाए जो मुश्किल समय में कोई परिवार कर सहारा बने। अपन घर में बिहा कर समय ये परिवार हर गांव कर लगभग 3,500 लोग मन पर दुर्घटना बीमा कर व्यवस्था करिस। हर व्यक्ति ला 1,00,000 रुपया कर बीमा कवर देहल गईस। ये पहल कर पीछे कर भावना बहुत छुए वाला है। परिवार हर देखे रहिस कि दुर्घटना कर बाद परिवार मनला आर्थिक कठिनाई कर सामना करना पड़ेल। ऐसे समय में एक छोटे कन सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाएल। संगवारी हो, सरकार देश कर करोड़ों परिवार मन तक सुरक्षा कर कवच पहुँचावत हवे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर तहत केवल 20 रुपया कर सालाना प्रीमियम, मने कि केवल 1 साल कर 20 रुपया कर प्रीमियम, ओकर पर 2,00,000 रुपया तक कर दुर्घटना बीमा मिलते। अब तक ये योजना से 58 करोड़ ले बगरा लोग जुड़ चुकीन हैं। इमे करीब 28 करोड़ हमर दाई बहिन बेटी मन हैं, महिला मन हैं। ये योजना से पीड़ित परिवार मन कर अब तक जो हिसाब मिली से 3,700 करोड़ रुपये ले बगरा कर सहायता मिल चुकी से। संगी हो, वही प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतना ही अहम है। ये योजना आदमी कर दुखद मृत्यु होए पर ओकर परिवार ला 2,00,000 रुपया कर बीमा कवर देते। एकर वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन कर मुश्किल से 1.5 रुपया। ये योजना से अब तक 27 करोड़ ले बगरा लोग जुड़ीन हैं। एकर तहत देश कर करीब 11,00,000 परिवार मन के करीब 22,000 करोड़ रुपया कर सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा कर पीछे लाखों परिवार मन कर अपन अपन कहानी है। कोनो माँ कर लइका मन कर पढ़ाई जारी रखे में सहायता मिल गई से, कहीं कोनो पत्नी ला घर कर जिम्मेदारी संभाले कर सहायता मिल गई। संगवारी हो, कई बार बहुत बड़ा सुरक्षा कर शुरुआत बहुत छोटा राशि और एक छोटा सा कदम से हो सकत है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करते। मोर राउर जम्मू जन से आग्रह है कि अपन परिवार में ये योजना मन कर बारे में जानकारी जरूर साझा करी। मोर दुलरुआ देशवासी हो, मन की बात में अब बात एक ऐसा विषय कर जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर करके बैठ गई से। ये विषय है अंधविश्वास कर। अंधविश्वास कई बार एक गलत धारणा नहीं होते, वो डर पैदा करते। और जब डर मन पर हावी हो जाते तो इंसान सच ला देखना ही बंद कर देते। अंधविश्वास में डूबल लोग बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसा फैसला लेहे लगते हैं जिनकर बड़ा नुकसान होते। वही समाज में ऐसा लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर वो धारणा मनला चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक कर ये यात्रा आसान नहीं होते। और आज में ऐसा ही एक सफल यात्रा कर बारे में रौरे मन के जरूर बताना चाहूँ। संगवारी हो, असम में एक चरई भेटा थे। वो चरई कर नाम है हरगिला। हरगिला एक दुर्लभ चरई है। ये प्रकृति ला स्वच्छ रखे में अहम भूमिका निभाते। लेकिन असम कर कुछ इलाका मन में लंबा समय तक एला अशुभ मानल जात रहिस। लोग एला अपन आसपास देखना पसंद नहीं करत रहिन। कई बार वो पेड़ मनला भी काट देहल जात रहिस जेमे हरगिला कर खोता बने हुआत रहिस। सोची, एक ऐसन चरई जो पर्यावरण कर सफाई में मदद करत रहिस, वही हरगिला लोग मन के डर कर शिकार बन गए रहिस। ये दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन हर ये सबला देखिन। वो लोग मन कर मन में बैठल गलत धारणा ला बदले कर संकल्प लेहिन। वो महिला मन से बात करिन, लोग मन ला विज्ञान कर आधार पर समझाइन। धीरे धीरे महिला मन ये अभियान से जुड़े लगिन। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू होइस। जे चरई ला कभों
अशुभ

गायन के भगाल जात रहिस वही गांव कर पहचान बने लगिस। हजारों ग्रामीण महिला मन हरगिला ला बचाए बर आगे आइन। आज उमन के हरगिला आर्मी कर नाम से जानल जाते। ये महिला मन समाज कर साथ संघर्ष भी करिन, समाज ला समझाए बर दिन रात काम करिन और अंधविश्वास ला पीछे छोड़ करके रहिन। उमन दिखाइन है जब सही जानकारी पहुंचाल जाते तो सालों पुराना सोच भी बदल सकत है। संगवारी हो, मैं अक्सर कहत हूँ जो खेलेल वही खिलेल। आज देश में ऐसा युवा मन कर संख्या बहुत तेजी से बढ़त है जो खेलत भी हैं और खिलत भी। पहल कर तुलना में अब कहीं अधिक युवा मन खेल ला करियर के रूप में अपनावत हैं। मोला नागालैंड कर दो ऐसे प्रयास मन कर बारे में जानकारी मिली से जो बहुत दिलचस्प है। पहल प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर के रौरे मन के जरूर लागत हो ही ये बहुत छोटा लड़का मन कर कोई साधारण लीग हो ही, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल कर उम्र कर छोटे छोटे लड़का फूल जैसन कर एक साधारण लीग है और ये लड़का मन के फुटबॉल खिलाड़ी मन कर एक ऐसा लीग है जो उनकर रफ्तार ला और प्रतिभा बर उनके प्रेरित भी करते हैं और उनकर पहचान भी बनाते हैं। एकर शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक लड़का मन के फुटबॉल से जोड़े बर होए रहिस। 5 से 12 साल तक कर लड़का और लड़की मन इमें हिस्सा ले सकत हैं। ये लीग अब अपन 3 साल पूरा कर चुकी से ये लीग कर लड़का मन के मन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़त है। संगवारी हो, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हुआ है। एकर नाम है नागालैंड महिला फुटसल लीग। हो सकत है रौरे मन पर ये फुटसल एक नया नाम है। मैं रौरे मन के बतात हूँ, फुटसल के इंडोर फुटबॉल भी कहल जाते। इमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल कर मैदान भी फुटबॉल कर मैदान ले बहुत छोटा होते। एकर चलते खिलाड़ी मनला जल्दी फैसला लेहक होते। उमनला अपन तरीका और कौशल कर बढ़िया उपयोग करना पड़ेल। नागालैंड कर महिला फुटसल लीग हमर बेटी मनला अपन प्रतिभा दिखाए कर बढ़िया मौका देते। मैं ऐसन पहल बर नागालैंड के मनखे मन कर सराहना करत हूँ। ऐसन पहल देश कर दूसरों हिस्सा मनला करे कर प्रेरणा देते। संगवारी हो, ये तकनीक कर युग है। रोज नवा नवा खोज होते, नवा नवा AI नवाचार सामने आवत है। ये दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोग मन कर रचनात्मकता ला कैसे बचाए रखल जाए। नवा तकनीक कर साथ आगे बढ़ते हुए हमन अपन जड़ से कैसे जुड़े रही, ये सवाल कर समाधान खोजी से नालंदा विश्वविद्यालय है। हजारों साल पुराना हमर नालंदा विश्वविद्यालय अब नवा अवतार कर रूप में भारत कर भाग्य गढ़त है। 2 साल पहले मोला नालंदा विश्वविद्यालय कर नवा परिसर कर लोकार्पण कर अवसर मिले रहिस। नालंदा विश्वविद्यालय हर शास्त्रार्थ कर हमर प्राचीन परंपरा ला फिर से जीवित करी से। शास्त्रार्थ केवल अपन बात रखे कर माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन कर एक अनुशासित प्रक्रिया है। ये में तर्क कर साथ तथ्य कर साथ अपन बात कहना बहुत जरूरी होते और ओमे राउर के महारत होना चाहिए। दूसर कर विचार ला धैर्य से सुने और समझे कर सीख भी ये शास्त्रार्थ कर प्रक्रिया से मिलते। मुला खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय हर इला अपन दीक्षांत समारोह कर हिस्सा बनाई। ये में भाग लेहे वाला करीब आधा छात्र मन अन्य देश से आए रहिन। एक प्राचीन परंपरा ला आज के समय से जोड़े कर ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं एकर बर नालंदा विश्वविद्यालय ला बहुत बहुत बधाई देहत हूँ। मैं देश कर दूसर विश्वविद्यालय मन से भी आग्रह करूँ कि ऐसे पहल ऊपर विचार करें। संगवारी हो, जड़ से जुड़े रह के युवा मनला नया तकनीक पर तैयार करे कर एक और बढ़ियन प्रयास हुआ थे। दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करे जात है। ये आधुनिक तकनीक ला भारत कर पारंपरिक ज्ञान से जोड़े कर दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एकर से भारतीय भाषा मन पर नया AI टूल्स तैयार करे में मदद मिली। हमर प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपि मनला
डिजिटल रूप में

संरक्षित करे कर कामला भी नया गति मिली। मैं केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय ला ये प्रयास पर बहुत बहुत शुभकामना देहत हूँ। संगवारी हो, आज भारतीय संस्कृति दुनिया कर अलग अलग हिस्सा तक पहुँचत है। हमार गीत संगीत और अध्यात्मला दुनिया भर के लोग जानत हैं और अपनावत हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम कर एक देश है। वहाँ भारतीय मनकर संख्या लगभग 100 है, शायद एकर ले भी कम होही। एकर बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ल एक बहुत बढ़िया प्रयास वहाँ हुआ थे। वहाँ स्पेनिश बोले वाला कुछ लोग मन एक टीम बनाई है। ये टीम कर नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम कर सदस्य मन मिल के वैदिक साहित्य कर अध्ययन करत हैं। उमन वैदिक मंत्र कर उच्चारण भी सिखात हैं। उमन ला एकर कोई सामान्य प्रशिक्षण नहीं मिली से, लेकिन उमन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के वैदिक मंत्र कर सही उच्चारण सीखीन हैं। आज उमन कई मंत्र मन कर बहुत बढ़ियन से जाप कर लेते हैं। एमे पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मयम शामिल हैं। भारत से इतना दूर रह के भी हमार परंपरा मनला सीखे कर उनकर ये प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहाँ कर जम सदस्य मनला उनकर प्रयास पर शुभकामना देहत हूँ। मैं ऐसे जम लोग मन हृदय से सराहना करत हूँ जो ये भारतीय संस्कृति ला दुनिया भर में लोकप्रिय बनाए बर निरंतर प्रयास करत हैं। मोर दुलरवा देशवासी हो, मेघालय कर पहचान बादल मन से है, खूबसूरत नज़ारा मन से है। जे मेघालय जाएल ओके वहाँ कर लोग मन कर अपनापन भी लंबा समय तक याद रहल। लेकिन मेघालय कर एक और विशेषता है जेकर मैं आज मन की बात में रौरे मन से चर्चा करना चाहत हूँ। ये है मेघालय कर रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ वाला रूट। ये रूट ब्रिज बनकर कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिन या कुछ बछर में नहीं बने, ये मनला तैयार होए में कई दशक लागेल। रबर कर रूख कर जड़ मनला धीरे धीरे दिशा देहल जाएल। ये जड़ मनला जलधारा मनकर पार ले जल जाएल। समय कर साथ वही जड़कर एक मजबूत ब्रिज कर रूप ले लेहल। ये ब्रिज बनकर एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीते कर संग ये और मजबूत हो जाते। यमन में मेघालय कर लोग मन कर सृजनशीलता दिखाई देहल। इनकर पाछू कई बछर कर धैर्य और प्रकृति कर प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते कि मनुष्य प्रकृति कर साथ मिलके कितना अद्भुत चीज बनाए सकत है। ये हमर देश कर, ये धरती कर धरोहर है। अब भारत मेघालय कर रूट ब्रिज मनला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नेटवर्क में शामिल कराए पर आवेदन करी से। संगवारी हो, मौसम परिवर्तन कर कारण ये रूट ब्रिज मनकर सामने कई चुनौती भी आते। ऐसे समय में मेघालय कर लोग मन ये प्राकृतिक धरोहर कर संरक्षण कर जिम्मेदारी भी बखूबी निभाईन है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं रहीस कि ऐसे ब्रिज मनकर संख्या कितना है। स्थानीय लोग मन खुद एकर गिनती शुरू करीन। एकर बाद समुदाय मन ये ब्रिज मनकर देखभाल कर जिम्मेदारी ला भी संभालिन। आज स्थानीय लोग 120 ले बगरा रूट ब्रिज मनकर देख रेख करत हैं। कुछ टीम हर साल ये पुल मनकर स्थिति कर जांच करेल। कुछ लोग मन आस पास कर क्षेत्र ला मजबूत बनाए पर नर्सरी भी तैयार करीन हैं। ये तरह कर इनकर संरक्षण पर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गई से। राउर देखे हो, ये बछर हैलीवार जिला पद्म पुरस्कार से सम्मानित करल गई से। उमन अपन जीवन कर 50 ले बगरा बछर ये रूट ब्रिज मनकर देखभाल में लगाइन हैं। उनकर समर्पण हमरे जम झन पर प्रेरणादायक है। संगवारी हो, राउर कभी ये रूट ब्रिज मनकर यात्रा करे ही तो उनकर तस्वीर सोशल मीडिया में जरूर साझा करी। राउर तस्वीर दूसर झनला भी मेघालय कर ये अनोखा धरोहर कर बारे में जाने पर प्रेरित करही। मोर दुलरुआ देशवासी हो, हमरे जम चाहत ही

कि हमर गांव साफ सुथरा हो, हमर शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुक के सोचल जाएल कि हमर आसपास जे कचरा जमा हुआ थे ओला कौन साफ करही। ज़्यादातर लोग मन तो यही मान के चलते कि ये कोई और कर जिम्मेदारी है और वही साफ करही। लेकिन हमर बीच कुछ ऐसे भी लोग होते जे अपन सोच से हमन ला बहुत प्रेरित करते। मोके मध्य प्रदेश कर राजगढ़ जिला कर ब्यावरा कर कुछ बहिन मन कर बारे में जाने कर मौका मिली। उमन अपन आसपास फैलल प्लास्टिक कचरा ला हटाए कर संकल्प लेहिन। ये नहीं सोचिन कि कोई आय के बदलाव लानी। उमन खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतल जमा करना शुरू करिन। धीरे धीरे ये प्रयास आगू बढ़त गईस और फिर वो प्लास्टिक ला इको ब्रिक्स में बदले जाए लागिस। आज यही इको ब्रिक्स कर उपयोग सार्वजनिक स्थान मन ला सुंदर बनाए में करल जात है। राजगढ़ मन में पाछू कुछ महीना मन में सैकड़ों किलो प्लास्टिक ला रिसाइकल करके उनकर बेहतर उपयोग करल गई से।

0: प्रेरित करते हैं। मौके मध्य प्रदेश कर, राजगढ़ जिला कर, ब्यावरा कर कुछ बहिन मनकर बारे में जाने कर मौका मिले। उमन अपन आसपास फैलल प्लास्टिक कचरा ला हटाए कर संकल्प लेन। ये नहीं सोचिन कि कोई आय के बदलाव लान ही। उमन खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतल जमा करना शुरू करिन। धीरे धीरे ये प्रयास आगू बढ़त गईस और फिर वो प्लास्टिक ला इको ब्रिक्स में बदले जाए लागिस। आज यही इको ब्रिक्स कर उपयोग सार्वजनिक स्थान मन ला सुंदर बनाए में करल जात है। राजगढ़ मन में पाछू कुछ महीना मन में सैकड़ों किलो प्लास्टिक ला रिसाइकल करके उनकर बेहतर उपयोग करल गई से। यानी जे प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलात रहिस, आज वही ये बहिन मनकर प्रयास से शहर कर सुंदरता बढ़ाए में योगदान देहत है। मैं ब्यावरा कर जम बहिन और ये अभियान ले जुड़े संगी मन ला बधाई देहत हूँ। मोर दुलरुआ देशवासी हो, मोके कई लोग मन चिट्ठी लिख के एक खास विषय पर बात करे पर सुझाव भेजीन है। ये विषय है गणेश उत्सव से जुड़ल है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन लोग मन ये आग्रह करीन है कि ये विषय ऊपर अभी ही बात होना चाहिए। दरअसल गणेश जी कर मूर्ति बनाए कर काम बहुत पहले शुरू हो जाए। मूर्ति बनाए वाला, मूर्ति मनकर व्यापार से जुड़ल लोग अभी से ये सक्रिय हो जाते हैं। इकर से मोर राउर जम झन से एक आग्रह है। राउर प्रयास करी कि राउर घर, सोसाइटी चाहे आसपास कर जगह मन में भी गणपति बब्बा कर जो मूर्ति स्थापित हो वो हमर देश कर माटी से बनल हो। वो हमर अपन कुम्हार और स्थानीय कलाकार मनकर हाथ से तैयार हुआल हो। जे लोग गणेश जी कर मूर्ति बनाते उनकर से भी मोर आग्रह है कि वो माटी कर मूर्ति मनला प्राथमिकता दें। और जे लोग मूर्ति खरीदते हैं वो भी ये जरूर देखें गणपति बब्बा कर मूर्ति का चीज़ से बनी से और कौन देश में तैयार हुई से। प्लास्टर आप पेरिस से बनल मूर्ति बिल्कुल झिन खरीदी संगवारी हो। माटी कर मूर्ति पूजा कर बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाए। एकर से हमर नदी, तालाब और पर्यावरण कर रक्षा होल। हमर आस्था भी बने रहल और प्रकृति कर प्रति हमर दायित्व भी पूरा हो जाए। जब हमरे स्थानीय कारीगर से मूर्ति खरीदी थी वोकल फॉर लोकल कर संकल्प ला मजबूत कर थी। मुके विश्वास है कि ये धार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हमरे ये जम बात ऊपर जरूर गंभीरता से सोचब और देश हित में कदम भी उठाब। संगवारी हो, हमर देश कर सबसे बड़ी शक्ति हमर देश कर लोग हैं। देश कर अलग अलग हिस्सा में होवत छोटे बड़े प्रयास हमन ला बहुत कुछ सिखायल। ये प्रयास बतायल कि जब मन में संकल्प हो और समाज कर साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लानल जा सकेल। राउर अपन आसपास होवत ऐसे प्रयास मन कर बारे में जरूर लिखत रही, अपन विचार और अपन सुझाव भेजत रही। हो सकेल राउर आसपास कर कोई छोटे अकन पहल पूरा देश भर प्रेरणा बन जाएल। आगू महीना फिर मिलब, देशवासी मन कर कुछ नया प्रयास कर चर्चा करब। तब तक राउर अपन और अपन परिवार कर ध्यान रखी। और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बरखा कर पानी कर एक एक बूंदला हमन के बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान चटिक भी ढीला नहीं हो देना है। तो मोर खास आग्रह है बरखा कर बूंद बूंद पानी हमरे मिल के बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन की बात का सरगुजिया अनुवाद। अनुवादक शिवानी गुप्ता। वाचन और संपादन था देवेंद्र दास सोनवाने का। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारी मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं। FM बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर लीजिए सुनिए आसम।

0: भोसले किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म दिल्ली का ठग का ये गीत, संगीत है रवि का, गीत लिखा है शैलेंद्र ने।
1: ये रातें, ये मौसम।

एफएम बैंड और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म अन इवनिंग इन पेरिस के सॉन्ग से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की, संगीत लिखा है, माफ़ कीजिएगा, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, गीत लिखा है शैलेंद्र ने। फिल्म है एन इवनिंग इन पेरिस। इस गीत को सुनना चाहते हैं इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश शुभम शिखा सैफाली, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा रजत मंजू और मयंक भाटिया, बुरसुदा छत्तीसगढ़ से भगवानी सेन

संतोषी सेन और चिराग सेन। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन सा, पल्लवी प्रखर, कुशा, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र सा। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, साहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। फाजिलिका पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, सालनी खेड़ा, दिवानसी खेड़ा, वानी खेड़ा, आरबी खेड़ा और जीवन सिंह बूक। गादिया मोजेस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना, पूजा, आरती कुमारी और सुनीता देवी। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। ग्राम लसूड़िया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी। सर डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, जय किशन, योगेश, वासु, हेमा और राधिका साहू। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्षी, सोनी, मोहनी और ऋतिक बलवीर सिंह। टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली से स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत छाबड़ा। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल। गांव अलंगीडाड़ जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन आयुष, श्रीमती फुलजी। ग्राम टोरोवाड़ जिला नवांशहर पंजाब गगनदीप थांदी, तृप्ति कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी थांदी। बुड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीरुर रहमान। ग्राम नवागांव मुड़ही पार जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, तेजेश्वर और कुणाल साहू। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु ऐश्वर्य, प्रीतम मनोज यादव। ग्राम चरोदा बानवापारा जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

इंस्टा फरमाइश में अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्रानी केवट, कृष्णा केवट और चंचल केवट। बिलाई छत्तीसगढ़ से अगले गीत को सुनना चाहते हैं मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। इस गीत को सुनना चाहते हैं देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेहवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यसी, हनी, पूजा, सीता। इस गीत को सुनना चाहते हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा, सबीहा, अनस और रेहान। रायगढ़ से रोहित, जयलक्ष्मी। ग्राम पंचायत खोंदला, उदयपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से जीवधन सिंह पैकरा, गुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। ग्राम अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, दिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े और मंजू राजवाड़े। बड़बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह, स्वरूप, आनंद, सरजल, जोड़ा पीपल अंबिकापुर से। ग्राम सिद्धमा बाजार जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निशा, दीपिका निशा, शिवांश राम, भरोस पैकरा, नरेश सिंह, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद। छोरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू, सानू, बबन, मुन्नू, कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया ठाकुर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिवकुमार शर्मा, लोकेश जोशी, कुमारी अंकित जोशी, बेबी वैदेही जोशी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखिजा, काफिर भाई। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। मिठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण बाधवानी और गेंदू भाई। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, हैप्पी राय और

अमित कुमार राय, दुर्गा कॉलोनी हांसी हरियाणा से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू टब्बू, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन, कुमारी भाव्या प्रियांश देवांगन। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में इंदिवर का लिखा गीत। संगीत है श्यामलाल मित्र का, फिल्म है आनंद आश्रम।

0: आप सुन रहे थे सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। FM बैंड और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब हम समाचार संध्या में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया

0: घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत

0: के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर

0: आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटना स्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths.

FM बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत में कुमार सानू अलका याग्निक के सरों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। संगीत है अनु मलिक का।

0: इस हवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से
1: हौ फरमाइशी कार्यक्रम हवे। संगी अपन फरमाइश भेजी आउ हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंत में लीजिए सुनिए कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में समीर का लिखा गीत। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फिल्म है दीवाना।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अबे दे शुरू है कि सहे।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं। FM बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आज किस सफर में आपके साथ मैं हूं हिमलता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार के इस मधुर गीत के साथ। संगीत है R.D. बर्मन का, गीत लिखा है मजरू ने, फिल्म है बुढ़ा मिल गया। इस गीत को सुनना चाहते हैं। नागचंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर जिया उल हक डावर भाटापारा दतरेंगी से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी, ग्राम चरोदा बार नवा पारा अभ्यारण जिला बालोदाबाजा छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू ज्योति ठाकुर, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया तुषार देव तामुरिया डॉली बेबी पूजा तामुरिया राधिका प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर, बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, बठिंडा रोड मंडी डब्बा

वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, पश्चिम बंगाल रानीगंज से रिहान शर्मा और करणदीप, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश प्रतीक्षा स्वप्ने लोखंडे और रक्षिता लोखंडे, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और अपार ढींगिया, धांडी नांदोरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म जिद्दी से। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है एसटी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं श्री गणेश अविका आर श्रीरामपुर से, डीएसओ कुंभार, अविका जीविका सानू कुंभार, अर्चना कुंभार कोयते वस्ती पुनावले से, अजय सोनवाणी, करिश्मा सोनवाणी, अविका सोनवाणी और साईसा सोनवाणी, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं, फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गीत लिखा है रविंद्र जैन ने, संगीत भी है रविंद्र जैन का, आवाज़ है हेमलता की। इस गीत को सुनना चाहते हैं रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, बुरखेड़ा पीनामल्ला जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत और चेतन नाहटा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफी पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराडे, साफिया एहरान खोकर और मोहम्मद हुसनैन पवार, ग्राम लसूड़िया पता नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र दांगी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुगू। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमकर, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोढ़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म जोश से। आवाज़ है अभिजीत की, संगीत है अनु मलिक का, गीत लिखा है समीर ने। इस गीत को सुनने की पेशकश हमें लिख भेजी है ग्राम लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदेव सिंह। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा। मडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन सा, पल्लवी शाह, प्रखर सा और कुशल सा। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कुमार सानू की आवाज में इंदिवर का लिखा गीत। संगीत है जतिन ललित का, फिल्म है मिस्टर आसिक। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके, श्राव्या राम टेके, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदनक अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। इसे लिख भेजा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरनाज और अबान अब्बासी, मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे और शुभम बेंडे, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी, बनियापारा छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद

कुमार डोडवानी। रसेरा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार संध्या, कीर्ति कुमार और दिकेश साहू। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: इंदिवर के इसी गीत के साथ आप सभी श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज समाप्त हुआ। एफएम बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। पंडित सुधीर पांडे इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट तबला वर्चुसो। ही रिसीव्ड हिज रिगरस ट्रेनिंग फ्रॉम हिज रेवर्ड फादर एंड गुरु लेट पंडित अर्जुन पांडे एंड हिज दादा गुरु पंडित भागवत सिंह। इनहेरिटिंग द रिच ट्रेडिशंस ऑफ द बनारस, दिल्ली एंड अजराड़ा घरानास, drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla.

Tuck it down.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यही संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasidh Mridanga Vadak hai. Unhone balyavastha se hi Mridanga Vadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein, unhone vikhyat Mridanga Vidwan श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री एम के आर प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुज श्री दंडमुड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एन एस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: Sri N.S. Kalyana Raman has accompanied several eminent musicians including Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Shankaranarayan, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
2: Sri N.S. Kalyana Raman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani kendr mein 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटी पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs.

0: He rendered 36 years of distinguished service to Akashvani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
1: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याणरामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है.
0: Tonight, श्री एन एस कल्याणरामन begins his लय विन्यासम on मृदंगम with मिश्र जाति झंपे तालम.

आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में

0: रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Ilaya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। FM बैंड और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने

0: भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajhedari aakar nahi aapasi samman aur vishwas par aadharit ho aur jahan hum har desh ke paas paas nahi साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the